मौजूद थे, पर वो चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अनंतर वाटिका में एक साधु आया, सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके पास ही एक टूटी हुई बीन थी, उसी से वो प्रभावशाली स्वर निकालता जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान पर वो अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा, दिल में अपार अनुराग का संचार हुआ, मदमत्त होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए, पानी में लहरें उठने लगीं, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा, उसमें स्फूर्ति आई और तब वो खड़ी होकर नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी, उसने देखा कि ये मेरा ही चित्र है, नहीं मैं ही हूं, मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूं। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूं, अथवा एक स्वर चित्र। वो सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों से जा लगी। उसकी दृष्टि में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष, तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वो स्वयं उसकी तालों पर थिरक रही थी। वो साधु अब प्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया। जब मधुर आलाप बंद हुआ तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था, वो उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, ये महल, ये सुख, ये सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधुओं को महल और धन का क्या काम? नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। महाराज, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं, लेकिन मुझे सुखों की कामना नहीं, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ये कहकर तारा ने आईने में अपनी अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। नहीं तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। ये कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला। तारा का गर्व टूक टूक हो गया, लज्जा से सिर झुक गया, वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, वो एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा। बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन करने के पश्चात उसकी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती, कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती। पर साधु इससे तनिक भी विचलित ना हुआ, तारा के माया जाल का उस पर कोई असर ना हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता, तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर अब मुझे ज्ञान हुआ है कि प्रेम पर ऐश्वर्य, सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर फिर से वही कृपा दृष्टि हो। कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूं, उसे भी मुझे देखे बिना चैन ना आवे, उसकी आंखों में भी नींद हराम हो जाए, वो भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होंठ खुले, वो मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए, आवाज सुनाई दी, तारा, मैं संसार के सारे पदार्थ प्रदान कर सकती हूं, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है, लेकिन माता, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं, बताइए मैं अपने प्रीतम को कैसे पाऊंगी। उसका एक ही मार्ग है, पर वो है बहुत कठिन, भला तुम उस पर चल सकोगी? वो कितना ही कठिन हो, मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। तो सुनो, वो सेवा मार्ग है, सेवा करो, प्रेम सेवा से ही मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वो कुछ रात रही उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती,
जंगलों से पुष्प चुनती, साधु नींद में होते तो वो उन्हें पंखा झलती, जंगली फूल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे। तारा रास्ते के कंकड़ चुनती, उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए, गंगा से पानी लाकर उन्हें सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नर्म गद्दे तैयार किए। अब कोई और कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता था। हाथों में गड्ढे पड़ गए, पैर कांटों से छलनी हो गए, धूप से कोमल गात मुरझा गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था। अब वहां प्रेम का राज था, वहां अब उसे सेवा की लगन थी, जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता है और कांटे पुष्प बन जाते हैं, जहां अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं, जहां के पत्थर रुई से ज्यादा कोमल हैं और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूं। धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था। वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते, तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनको दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बौधा रोगी मनुष्य साधु के पास आशीर्वाद लेने आते थे। तारा रोगियों की सेवा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात भर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूख जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी लेने के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता था, उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते। इसी दशा में एक दिन वो हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए, उसने देखा देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही हैं। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा तेरी अभिलाषा पूरी हुई? हां माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। तुझे प्रेम मिल गया? नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञान हुआ कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे प्रेम आदर सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं, उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था, आकाश में तारे ऐसे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदे, वायु में चित्ताकर्षक शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगा रही थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य धन और सौंदर्य जो कुछ ना कर सका वो तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूं, बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूं। तारा ने कहा, स्वामी जी मुझे अब कोई इच्छा नहीं, मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूं। लेकिन मैं दिखा दूंगा कि योग साधकर भी मनुष्य के हृदय निर्जीव नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा, पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव नदी की सैर करेंगे, प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गाएंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी

सेवा मार्ग पर चलकर मैं अब अभिलाषाओं से पूरी हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अराकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अराकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और

सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
1: हाजिर है कला संस्कृति और अदब का आपका पसंदीदा कार्यक्रम कला कल्लोलनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की विशेष कड़ी किसी आम सफर की नहीं, बल्कि भारतीय रंगमंच के उस वटवृक्ष की दास्तान है जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक अपनी सांसों से थिएटर को सींचा है। जी हाँ, रंगमंच महज लकड़ी का एक बेजान तख्ता या कुछ चमकदार रोशनियों का कौतूहल नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा का वह खुला चौक है जहां समाज अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ नग्न खड़ा होता है। जब थिएटर का पर्दा उठता है तो सिर्फ एक नाटक शुरू नहीं होता, बल्कि जिंदगी अपने सारे मुखौटे उतारकर सच से आंखें मिलाती है। सिनेमा जहां कट और रीटेक के कंक्रीट के पीछे छुप सकता है, वहीं रंगमंच एक जलती हुई भट्टी है और यहां वही टिक सकता है जो तपने का मादा रखता हो। इस भट्टी में तपकर जो कुंदन बना और जिसने भारतीय थिएटर को एक नई गरिमा, एक नया अनुशासन और एक नया दर्शन दिया, उस महानायक का नाम है राम गोपाल बजाज। बजाज साहब का रंगमंच पर होना ऐसा है जैसे किसी घने पुराने जंगल में एक शांत और विशाल वटवृक्ष का होना।
2: वक्त की इस नाव पर सवार होकर आज हम सब रुक करते हैं बिहार के सहरसा जिले के उस कोशी अंचल की तरफ, जहाँ की लहरों में जितना बहाव है, आदरणीय बजाज साहब के भीतर की कला में भी उतनी ही गहराई है। 1 जुलाई 1940 को इसी अंचल की गोद में एक ऐसे बालक का जीवन शुरू हुआ जिसका बचपन बाहरी पाबंदियों से कहीं ज्यादा अपने भीतर के एक अनकहे सन्नाटे से गुजरा। राम गोपाल बजाज का बचपन घोर अभाव में बीता था। गांव या मोहल्लों में रामलीला का मंचन सजता या कोई पारंपरिक नौटंकी आती तो ये बालक सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई की किताबें छोड़कर बस उन कलाकारों के चेहरों, उनकी बुलंद आवाजों और मंच की उस तिलिस्मी रोशनी को निहारता रहता। घर से डांट पड़ती, पाबंदियां लगती, मगर जो चिंगारी भीतर सुलग रही हो उसे बाहर की पाबंदियां भला कैसे बुझा सकती थी। वो छुप छुप कर नाटकों की किताबें पढ़ते और बचपन का यही मानसिक और कलात्मक संघर्ष दरअसल उनके भीतर के उस महान रंगकर्मी को जन्म दे रहा था।
1: रंगमंच की तरफ पहला झुकाव बजाज साहब ने खुद बताया था कि बचपन में उनके घर के पास एक मारवाड़ी पुस्तकालय था और पास में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या स्थानीय क्लबों के माध्यम से कभी कभी नाटक होते थे। बचपन में उन्होंने जहां पारसी थिएटर शैली के नाटक और स्थानीय रामलीलाएं देखी, उन नाटकों के संवादों का लहजा और मंच की दुनिया उनके बाल मन में ठहर गई थी। वह छुपकर नाटक देखने जाते थे क्योंकि घर में पता चलने पर सख्त मनाही थी। उनके भीतर कला को लेकर एक अजीब सी तड़प थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और कोशी अंचल की मिट्टी में पला बढ़ा वो मासूम बालक अब धीरे धीरे किशोरावस्था की दहलीज लांघकर जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस उम्र में जहां अमूमन लड़के दुनियादारी की फिक्र में खो जाते हैं, वहीं बजाज साहब के भीतर कला और वैराग्य का एक अद्भुत संगम आकार ले रहा था। गांव में जब कोई भी तीज त्योहार आता तो वे ढोलक और मजीरों की थाप पर होने वाले भजन कीर्तनों में पूरी तन्मयता से शामिल हो जाते। रामलीला के मंच पर सजने वाले किरदारों को एकटक निहारना, बंद कमरों में गीता के श्लोकों की गहराई को टटोलना और छुप छुप कर नई कहानियों और कविताओं को पढ़ना उनकी इस दीवानगी को और परवान चढ़ा रहा था।
2: उम्र के इस पड़ाव पर एक अजीब सा अल्हड़पन था, एक बेलौस बेफिक्री थी। ये जवानी का वो दौर था जहां आवारगी भी थी और कुछ नया सीखने सिखाने की असीम ललक भी। दोस्तों के साथ बेमकसद घूमना, घंटों कला और अदब पर बहस करना और जिंदगी के थपेड़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना, इसी उठती जवानी के शोर और सूफियाना तन्हाई के बीच राम गोपाल बजाज के भीतर का वो अंगार तैयार हो रहा था, जिसकी तपिश आगे चलकर पूरे भारतीय थिएटर को महसूस करनी थी।
1: दरभंगा के सीएम कॉलेजों की बंदिशों से आजाद होकर जब वो नौजवान घर से बाहर कोलकाता पहुंचा तो जेब पूरी तरह खाली थी। न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई सहारा। बजाज साहब स्वयं अपने इस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वे कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन में बेबसी की हालत में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग घूम घूम कर चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। बस पेट की आग और उस सूनेपन के बीच इस खुद्दार नौजवान के दिमाग में एक विचार आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, कम से कम दो आना तो मिलेगा ही, जिससे दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके और पेट भर सके।
2: कलकत्ता के उन मसरूफ और अजनबी सड़कों पर अपनी पहचान और वजूद तलाशते हुए बजाज साहब ने केवल थिएटर ही नहीं देखा, बल्कि जिंदगी को बहुत करीब से भी महसूस किया। खुद को जिंदा रखने के लिए और पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए ताकि वे कलकत्ता में टिक सके, लेकिन उनका असली ठिकाना था वहां के थिएटर, ऑडिटोरियम और नुक्कड़।
1: उस दौर में कलकत्ता में पारसी थिएटर का असर तो था ही, साथ ही इप्टा की प्रगतिशील चेतना भी चरम पर थी। बजाज साहब घंटों भूखे प्यासे रहकर और बांग्ला रंगमंच के उस असीम अनुशासन को अपनी आंखों से समेटते। उन्होंने वहां केवल अभिनय की तकनीकें नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने देखा कि कैसे रंगमंच समाज की विसंगतियों पर सीधे प्रहार करता है। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू किया।
2: और वो अक्सर कहा करते थे कि कलकत्ता ने उन्हें वो दृष्टि दी जिसने उनके भीतर के अकेलेपन को एक वैचारिक गहराई में बदल दिया। वे समझ गए थे कि थिएटर महज मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और यही तजुर्बा, यही तपन और कलकत्ता का यही कड़ा संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का वो सबसे बड़ा आधार बना जिसने उन्हें सीधे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां भारतीय रंगमंच का एक नया इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू कर दिया।
1: कलकत्ता की गलियों में अपनी कलात्मक भूख और इस कड़े संघर्ष को जीने के बाद वे बिहार की राजधानी पटना आए और यहाँ से उन्होंने नए सिरे से अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पर आर्थिक तंगी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय में एमए हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इस स्वाभिमानी लड़के ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीती और इनाम के रूप में पुअर बॉयज फंड से अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च निकाला। लेकिन जब तक ये बात रूढ़िवादी बजाज खानदान को पता चली तो खानदान के लोगों को झूठी शान की ठेस लगी। वे गुस्सा हो गए कि हमारी बिरादरी का लड़का पुअर बॉयज फंड से क्यों पढ़ेगा। पर इस फक्कड़ कलाकार को किसी की झूठी शान की परवाह कहाँ थी। उन्होंने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रातों के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर पटना की सड़कों पर रिक्शा तक चलाया।
2: क्या बात है, संघर्षमयी मिट्टी से तपकर जब वे बाहर निकले तो उनका साहित्य से रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। बचपन में अपनी पूज्य दादी माँ को भगवत गीता और रुक्मणी मंगल का पाठ पढ़कर सुनाने वाले बजाज साहब अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के दीवाने हो चुके थे। आगे चलकर आधुनिक कविता के पुरोधा अज्ञेय जी से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने बजाज साहब के भीतर के उस संवेदनशील कवि को पहचान लिया। पटना में रहते हुए जब वे एमए प्रीवियस पास कर चुके थे तभी उनकी मुलाकात हिंदी के महान कथाकार परेश्वरनाथ रेणु जी से हुई।
1: रेणु जी इस नौजवान की आंखों में चमक और प्रतिभा भांप गए। उन्होंने बजाज साहब को पटना की एक स्थानीय ड्रामा मंडली से मिलवाया। उन्हीं दिनों पटना में एक सज्जन मिले, हामिद साहब, जो किराए पर कमरे चलाया करते थे। हामिद साहब ने इस बेसहारा कलाकार को न केवल छत दी, बल्कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD के इंटरव्यू का बुलावा आया तो अपनी जेब से कुछ पैसों की मदद भी की। हामिद साहब के उन्हीं पैसों का सहारा लेकर यह नौजवान दिल्ली पहुंचा। एमए फाइनल की परीक्षा देने से पहले ही उसका सिलेक्शन सीधे NSD में हो गया। दिल्ली आकर उन्होंने रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब के कड़े अनुशासन में रंगमंच का काखा गा सीखा। सन 1965 में राम गोपाल बजाज जी का NHD में चयन हो गया था।
2: और राम गोपाल बजाज पटना विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके और दिल्ली स्थित NSD चले गए। वे 1965 के बैच के छात्र रहे। उन्होंने अभिनय में अपना डिप्लोमा पूरा किया। NSD में उन्हें प्यार से बड़े छोटे सभी बज्जू भाई बज्जू सर कहते थे। वो हमेशा से सभी का साथ देने वाले मददगार दोस्त साथी और शिक्षक रहे। उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में अंग्रेजी का माहौल बहुत ज्यादा था। खुद रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब बड़े सलीके से अंग्रेजी बोलते थे, जबकि राम गोपाल बजाज जी की हिंदी बेहद मुकम्मल शुद्ध और साफ थी। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक सौदा हुआ। अलकाजी साहब ने बजाज साहब से कहा, तुम मुझे हिंदी सिखाना, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा।
1: भाषा का ऐसा अद्भुत आदान प्रदान रंगमंच के इतिहास में बिरला ही देखने को मिलता है। अलकाजी साहब हिंदी कविता और उसके ठहराव को सीखने के लिए इतने आतुर रहते थे कि कई बार सुबह बेहद तड़के भोर में ही बजाज साहब को बुला लिया करते और उनसे घंटों डूबकर हिंदी की कविताएं सुना करते थे।
2: अलकाजी साहब के उसी कड़े अनुशासन और प्यार की छाव में बज्जू भाई ने कई नाटकों में काम किया। उन्होंने अंधा युग, तुगलक जैसी कई ऐतिहासिक और कालजयी प्रस्तुतियों में साथ काम करके भारतीय रंगमंच का इतिहास बदल दिया। हालांकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में उनके द्वारा साथ किए गए कुल नाटकों की कोई निश्चित संख्या दर्ज नहीं है, पर यह बात पूरी दुनिया जानती है कि इब्राहिम अलकाजी ने राम गोपाल बजाज को आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक सशक्त, निडर और बेमिसाल अभिनेता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बजाज साहब आज भी जब अलकाजी साहब को याद करते हैं तो अंधा युग के वो दिन उनकी आंखों में एक जीवंत दृश्य की तरह तैरने लगते हैं।
1: न कोई जबां आड़े आई, न कोई दस्तूर आड़े आया, मुर्शिद ने जब मुरीद को अपनी रूह से मिलाया, एक दूजे को सौंप दी दोनों ने अपनी कायनात, उधर से इल्म बहा, इधर से अदब का दरिया आया। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की चौखट पर कदम रखने के बाद इस खुद्दार नौजवान ने जैसे रंगमंच को ही अपनी इबादत बना लिया था। बजाज साहब ने वहां केवल अभिनय की बारीकियों को ही नहीं साधा, बल्कि नाटक की मुकम्मल रूह को समझा। मंच की रोशनियां कैसे भावनाओं को उभारती हैं, सेट कैसे एक बेजान जगह को जिंदा करता है, और वेशभूषा जैसे किसी किरदार को वजूद देती है। उन्होंने इन सब विधाओं को पूरी लगन से सीखा और इसके साथ ही उनका नाता विश्व और हिंदी साहित्य के महान लेखकों से और गहरा होता गया।
2: लेकिन इन सब चमक धमक और कला के शोर के बीच कई बार रातों के सन्नाटे में घर की याद उन्हें घेर लेती थी। अपनी पूज्य दादी माँ की ममता और उनके आंचल की खुशबू को याद करते हुए इस संवेदनशील कलाकार की आंखें भर आती थी। उस वक्त जब मंडी हाउस की भीड़ अपने चरम पर होती, तब इस युवा रंगकर्मी का दिल करता कि वे इस हुजूम से अलग होकर कहीं दूर बिल्कुल एकांत में चले जाएं। दरअसल बजाज साहब भीतर से हमेशा एक बेहद आध्यात्मिक इंसान रहे, जो बाहरी दुनिया के शोर से थककर एकांत के उसी सन्नाटे में खुद को भीतर से शांत करते थे, अपने जख्मों को सहलाते थे। उनके लिए अकेलापन का वो सूनापन कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक रूहानी वरदान था, जिसे महसूस करते हुए अक्सर सोचते थे, अकेलेपन से बढ़कर आनंद नहीं, आराम नहीं, स्वर्ग है वो एकांत, जहां शोर नहीं, धूमधाम नहीं। ऐसे भावों को लेकर मुझे DH लॉरेंस की लिखित और दिनकर की अनुवादित वो कविता याद आ रही है।
1: देश और काल के प्रसार में शून्यता, अशब्दता, अपार में चांद जब घूमता है, कौन सुख पाता है? भेद यह मेरी समझ में तब आता है, होता हूं जब मैं अपने भीतर के प्रांत में, भीड़ से दूर किसी निभृत एकांत में, और तभी समझ यह पाता हूं, पेड़ झूमता है किस मोद में, खड़ा हुआ एकाकी पर्वत की गोद में, बहता पवन मंद मंद है, पत्तों के हिलने में छंद है, आह कितना आनंद है।
2: बिल्कुल, भीड़ से दूर अपने भीतर के इसी निभृत एकांत में बैठकर उन्हें ब्रह्मांड के इस परम सत्य का बोध होता था। प्रकृति के इस मूक संगीत, हिलते पत्तों के छंद और मंद मंद बहती हवा के इसी रूहानी आनंद ने उनके भीतर के अकेलेपन को एक दिव्य दार्शनिकता में बदल दिया, जिसने आगे चलकर उनके अभिनय और निर्देशन को एक अमर और कालजयी गहराई प्रदान की।
1: एनएसडी से शिक्षा पूरी करने के बाद रामगोपाल बजाज जी केवल एक छात्र नहीं रहे, वे सालों तक इस प्रतिष्ठित संस्थान की फैकल्टी के रूप में नए कलाकारों को गढ़ते रहे और आगे चलकर नवंबर 1995 से सितंबर 2001 तक इसके निदेशक डायरेक्टर बने। बतौर निदेशक उनका यह कार्यकाल भारतीय रंगमंच का स्वर्ण युग साबित हुआ। वे सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि थिएटर के हर विभाग जैसे मेकअप, स्टेज लाइटिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग के एक सिद्ध ऑलराउंडर थे, जिन्होंने स्कूल की अकादमिक और कलात्मक रीढ़ को मजबूत किया।
2: उन्होंने विस्तार, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण जैसे कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान था भारत रंग महोत्सव। 1999 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल और पूरी तरह उन्हीं की कल्पना से उपजा जश्न बचपन व बाल संगम। इन उत्सवों ने देश विदेश के थिएटर समूहों, वयस्कों, बच्चों और पारंपरिक लोक कलाकारों को एक वैश्विक मंच दिया। स्कूल की शिक्षा प्रणाली में थिएटर को अनिवार्य करने की जोरदार वकालत करने वाले बजाज साहब दिल्ली के मशहूर देशांतर थिएटर ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं।
1: मंच, रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बजाज साहब के पास कविताओं के पाठ और उनकी प्रस्तुति का एक ऐसा जादुई हुनर है कि जब वे बोलते हैं तो शब्द जीवंत होते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बुनियाद खड़ी करने में इब्राहिम अलकाजी की बड़ी भूमिका रही। ये भी असंदिग्ध है कि उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण की जो आधारशिला रखी, उसकी वजह से कई अच्छे अभिनेता और निर्देशक रंगमंच के क्षितिज पर आए।
2: अलकाजी साहब अपनी तरह के अद्वितीय रंग व्यक्तित्व हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं, किंतु उसके बाद एनएसडी के सबसे कल्पनाशील निदेशक बज्जू भाई ही हुए और इस संस्था की परिधि का विस्तार जितना उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सका। उनके चलाए हुए कुछ कार्यक्रम तो अब लगभग बंद ही हो गए हैं, जैसे कि श्रुति। बज्जू भाई द्वारा बनाई गई परिधि अब छोटी पड़ती जा रही है। बजाज साहब ने अपने कार्यकाल में हिंदी की नाट्य पत्रिका रंग प्रसंग की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में श्रुति कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हिंदी के वरिष्ठ या युवा लेकिन चर्चित कथाकार या कवि आकर रचना पाठ करते थे
1: और इसी कारण से हिंदी भाषी समाज और नाट्य विद्यालय का एक गहरा जीवंत रिश्ता बन गया था। बज्जू भाई ने ही बहावलपुर हाउस परिसर में सम्मुख थिएटर बनवाया और फिर अभिमंच बनाना शुरू किया, जो अंकुर जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। 1996 में बज्जू भाई ने बतौर निर्देशक स्कूल के दीक्षांत समारोह के अवसर पर एकल अभिनय नाट्य

0: स्कंद गुप्त 1989 में मिर्जा गालिब के दर्द को समेटते कैद हयात और 1992 में मोहन राकेश की अमर कृति आषाढ़ का एक दिन का निर्देशन कर उन्होंने निर्देशन कला की नई परिभाषाएं सीखी।
1: केवल निर्देशन ही नहीं, उनके भीतर का संवेदनशील लेखक भी उतना ही प्रखर था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गिरीश कर्नाड के कन्नड़ नाटक ताले दंड का रक्त कल्याण के नाम से किया गया उनका शानदार हिंदी अनुवाद है। इस अनुदित नाटक का निर्देशन पहले रिपेटरी के लिए स्वयं उनके रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी ने और बाद में अस्मिता थिएटर के लिए अरविंद गौड़ ने किया। सचमुच कोशी अंचल की मिट्टी से निकला यह फक्कड़ और दार्शनिक कलाकार जब दिल्ली के मंडी हाउस के गलियारों में उतरा तो उसने न केवल खुद को साबित किया बल्कि समकालीन भारतीय थिएटर का पूरा भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
0: जी हाँ, रामगोपाल बजाज बज्जू भाई जी की देखरेख और मार्गदर्शन में भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की कई उत्कृष्ट पीढ़ियां तैयार हुईं। उनके प्रमुख शिष्यों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, आशुतोष राणा, सीमा विश्वास, गोविंद नामदेव, यशपाल शर्मा और स्वर्गीय श्री वल्लभ व्यास जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं, जिन्होंने उनसे अभिनय और थिएटर के कड़े अनुशासन की बारीकियां सीखकर आज पूरी दुनिया में अपनी कला का परचम लहराया है।
1: पद्मश्री से सम्मानित रामगोपाल बजाज केवल थिएटर के ही बेताज बादशाह नहीं रहे बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के पर्दे पर भी उन्होंने अपनी अदाकारी का ऐसा रंग बिखेरा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों से अभिनय का ककहरा शुरू करने वाले बजाज साहब ने जब सिल्वर स्क्रीन की तरफ रुख किया तो वहां भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शेखर कपूर की मासूम 1983 हो या केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा बेहद सराही गई मिर्च मसाला फिल्म 1985 हो या फिर यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी 1989 हो, बजाज साहब ने हर बड़े निर्देशक के विजन में खुद को एक मुकम्मल अभिनेता के रूप में ढाला। उनकी अभिनय की रेंज इतनी व्यापक थी कि जहां एक तरफ वे लीक से हटकर दीपा मेहता की फायर 1996 जैसी फिल्मों का हिस्सा बने, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का परचम लहराया जब वे ग्लोबल स्टार जैकी चैन की मशहूर फिल्म द मिथ 2005 में एक मार्शल आर्ट्स शिक्षक की दमदार भूमिका में नजर आए।
0: और वक्त बदला, सिनेमा का मिजाज बदला, लेकिन बजाज साहब की कला का जादू हमेशा नया बना रहा। सिनेमा के बदलते दौर के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने आधुनिक सिनेमा और OTT की दुनिया में भी उतनी ही सहजता से प्रवेश किया। उनका संजीदा अभिनय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरने वाली फिल्में मैंगो ड्रीम्स, इन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता। उसकी कला वक्त के हर फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक और देश के इस महान ऑलराउंडर का ये फिल्मी सफर महज कुछ फिल्मों की सूची नहीं है बल्कि ये गवाही है इस बात की कि जब थिएटर की माटी में तपा हुआ कोई फनकार कैमरे के सामने खड़ा होता है तो सिनेमा की स्क्रीन भी उसकी शख्सियत के आगे छोटी पड़ जाती है।
1: प्रोफेसर बजाज को भारतीय रंगमंच में उनके चौतरफा रचनात्मक योगदान के लिए कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, नेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड, साहित्य कला परिषद सम्मान, नंदीकर सम्मान शामिल हैं और उन्हें 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वे आधिकारिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में थिएटर, फिल्म, जनसंचार के क्षेत्र में कार्यकारी बोर्ड, जनरल काउंसिलिंग और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
0: उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामित के रूप में बोर्डों और समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया। उन्होंने सन 2000 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्य के रूप में भी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2001 के लिए पैनोरोमा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
1: श्रोताओं, आज भले ही बज्जू भाई दिल्ली की इस भागदौड़ से दूर कहीं और वक्त बिता रहे हों, पर सच तो ये है कि मानसिक रूप से उनका दिल आज भी दिल्ली में ही धड़कता है। जब भी उनसे गुफ्तगु हुई है, मंडी हाउस के गलियारों और NSD के किस्से उनकी बातों में जीवंत तो हो उठते हैं। रामगोपाल बजाज के प्रिय कवि रहे हैं अज्ञेय। उनकी कविता जो बज्जू सर को बहुत पसंद है, हम उन्हें अर्पित करते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, वह दो खंभों के बीच है रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ। वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है जिस पर रोशनी जो पड़ रही है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, खंभे नहीं, रस्सी को नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच।
0: रेडियो आजाद हिंद की तरफ से हम सभी के प्यारे बज्जू सर, बज्जू भाई को दिल से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों, खूब जिएं और अपनी कला से हम सभी को हमेशा यूं ही बहुत कुछ सिखाते रहें। आपकी ये अद्भुत रंगमंच की यात्रा, आपका फक्कड़पन, आपका स्वाभिमान और आपका कड़ा संघर्ष हम सभी के लिए, आने वाली हर पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का एक अटूट स्रोत बना रहे। प्रणाम बज्जू भाई।
1: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में बस आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, लेखन दीपक नेमा, और आपके साथ था मैं विजयकांत नायक,
0: और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रानी रेखवार भारती। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की भयावहता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी का क्रूर अनुशासन। प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की यात्रा अकल्पनीय आतंक की दुनिया में उतरने जैसी थी, जहां मृत्यु अपने सबसे विभत्स और भयानक रूपों में आती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में, जैसे कि एंक्यूजेन या फॉर्च्यून, जो जापान के मार्गों पर चलते थे, वहां का वातावरण पेचिश, अत्यधिक भीड़ और उल्टी की निरंतर दुर्गंध का एक अस्थिर मिश्रण था। इन तैरते हुए नरक तुल्य जहाजों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी अनुशासन की एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर थी जो औसत नाविक को पूर्ण समर्पण के लिए डराने के लिए डिजाइन की गई थी। वीओसी के लिए एक नाविक आज्ञाकारी दास से अधिक कुछ नहीं था। किसी श्रेष्ठ के आदेश के प्रति थोड़ी सी भी अनिच्छा या बुदबुदाहट के संकेत पर एक नाविक को नियमित रूप से रस्सी से पीटा और धमकाया जाता था। हालांकि जो लोग अधिक गंभीर अपराध करते थे, उनके लिए डच नौसैनिक कानून की भीषण रचनात्मकता ने कहीं अधिक विभत्स रूप ले लिया था। गंभीर दंडों में सबसे आम था यार्ड आर्म से गिराना। उदाहरण के लिए, एंक्विजिन पर यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत शराब लेते पकड़ा जाता तो उसे उसके हाथ बांधकर रिंगिंग में ऊपर खींच लिया जाता और फिर 40 या 50 फीट नीचे गिरा दिया जाता था। रस्सी के अंत में लगने वाला अचानक झटका पीड़ित के कंधों को उखाड़ने या तोड़ने के लिए काफी था, जिसके बाद उसे कोड़े मारने के लिए मस्तूल से बांध दिया जाता था। चाकूबाजी या झगड़े में शामिल लोगों के लिए सजा और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपराधी को अपना हाथ जहाज के मस्तूल के खिलाफ रखने के लिए मजबूर किया जाता था और उसकी हथेली के केंद्र से एक तेज चाकू पार कर दिया जाता था, जिससे वह लकड़ी से चिपक जाता था। अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए नाविक को चाकू को अपने ही हाथ में खींचकर बाहर निकालना पड़ता था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसे अपने ही मांस को काटना और टेंडन को अलग करना होता था। नौसैनिक अनुशासन की सबसे निचला स्तर कील हॉलिंग था। दोषी व्यक्ति को वजन से बांधकर ओवरबोर्ड फेंक दिया जाता था और एक रस्सी द्वारा जहाज के नीचे से दूसरी तरफ खींच लिया जाता था। अंधेरे पानी के नीचे खींचे जाते समय नाविक को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, डूबने की उच्च संभावना और जहाज के तल पर जमे सत राग्र और तीखे शंख जो आरी की तरह काम करते थे। इसका परिणाम अक्सर पीड़ित के शरीर से मांस का खून से लथपथ पट्टियों के रूप में उखड़ जाना होता था। जापान में भर्ती किए गए सैनिकों और भाड़े के लड़ाकों के लिए यह तलवार की दवा ही एकमात्र ऐसा अधिकार था जिसका वीओसी का मानना था कि वे सम्मान करते हैं। सतर्कता में मामूली चूक का अंत भी अंतिम होता था। पेड्रो नामक एक सैनिक को केवल इसलिए फायरिंग स्क्वाड द्वारा मार दिया गया क्योंकि वह किले की दीवारों पर पहरा देते समय सोता हुआ पाया गया था। टॉर्चर और जुर्माने की इस व्यापक प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि चाहे वह एम्स्टर्डम का कोई गरीब नाविक हो या हीरोडो का कोई साहसी व्यक्ति, वह कंपनी राज्य का एक आज्ञाकारी सेवक बना रहे जो रस्सियों ब्लेड के निरंतर प्रत्यक्ष भय से बंधा हुआ था।
0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भगवती चरण वर्मा की कविताएं।
2: श्रोताओं, भगवती चरण वर्मा के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के विषय में हम सब ने सुना है। हालांकि श्री वर्मा स्वयं को मुख्यतः एक उपन्यासकार ही मानते हैं, न कि कवि, लेकिन ये भी सत्य है कि कविताएं भी वे बहुत अच्छी लिखते हैं। खासकर उनकी प्रेम कविताएं तो प्रणय की पुकार लगती हैं। जिस तरह से चित्रलेखा उपन्यास पाप और पुण्य की एक नई परिभाषा गढ़ता है, उसी तरह उनकी कविताएं भी पाप पुण्य के रूढ़िवादी मानदंडों की परवाह नहीं करती। दैहिक आकर्षण को इसमें पाप नहीं माना जाता। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कविताओं पर ये बातचीत।
0: श्रोताओं, जीवन क्षण भंगुर है, फिर मिलना बिछड़ना तो लगा ही रहता है। इस बात का क्या ठिकाना कि जो आज मिला है वो फिर कभी मिलेगा कि नहीं। इसलिए अपनी अपनी कह सुन ले। कुछ इसी भाव को व्यक्त करती है भगवती चरण वर्मा की कविता। कुछ सुन ले, कुछ अपनी कह लें। सुनते हैं इसकी चंद पंक्तियां। कुछ सुन ले, कुछ अपनी कह ले, जीवन सरिता की लहर लहर, मिटने को बनती यहां प्रिय, संयोग क्षणिक फिर क्या जाने, हम कहां और तुम कहां प्रिय।
2: लेकिन समस्या ये है कि जो बिछड़ जाते हैं वे भी कहां छूटते हैं, यादों में चुपचाप चले आते हैं। ये समस्या कवि के साथ भी है। उसकी प्रिया उसकी स्मृति में बार बार आती है और उसे प्यार कर जाती है। तुम सुधी बन बन कर बार बार क्यों कर जाती हो प्यार मुझे, फिर विस्मृति बन तन मैता का दे जाती हो उपहार मुझे।
0: जो कभी अपने होते थे वे आज ना जाने कहां खो गए हैं। ऐसा लगता है कि एक सपना था जो टूट गया। कितना सुहाना सपना था ना वो, हे सुमुखी। ऐसा लगता था कि एक तुम्हारे होने से सारा संसार अपना है। माना माना वो केवल सपना था, पर कितना सुंदर सपना था। जब मैं अपना था और सुमुखी, तुम अपनी थी जग अपना था।
2: श्रोताओं, हर प्रेमी को अपनी प्रेयसी सर्वोपरि लगती है। उसकी बोली कोयल की तरह मीठी लगती है, उसकी आंखें हिरणी की तरह सुंदर लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि एक सुंदर तस्वीर से निकलकर साक्षात सामने आ गई हो। उसकी मादकता मदहोश किए जाती है। वो एक उल्लास की तरह आती है, लेकिन हृदय की प्यास फिर भी नहीं मिटती। मिटे भी कैसे, क्योंकि ये आज की नहीं बल्कि युगों की प्यास है, जिसकी तीव्रता बताने में प्रेमी समर्थ नहीं। अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि कहता है, तुम मृगनयनी, तुम पिकवैनी, तुम छवि की परिणीता सी, अपनी बेसुध मादकता में भूली सी, भयभीता सी, तुम उल्लास भरी आई हो, तुम आई उच्छ्वास भरी, तुम क्या जानो मेरे उर्मे कितने युग की प्यास भरी।
0: हे प्रिय, एक मैं हूं जो तुम्हारे प्रेम में तड़प रहा हूं, और एक तुम हो जो अपना नया नया प्रेम अभिमान के भार से दबाए जा रही हो। देखो, प्रेम में अभिमान नहीं, समर्पण जचता है। तुम अभिमान भरी आई हो अपना नव अनुराग लिए, तुम क्या जानो कि मैं तप रहा किस आशा की आग लिए।
2: चलो अच्छा हुआ तुम मान गई, तुमने अभिमान छोड़ दिया। तुम हंस रही हो और हंसा रही हो। हाँ, अब तुम मुझे मिल पा रही हो। लेकिन सुनो हे प्रिय, मैं भी इतना स्वार्थी नहीं कि प्रेम में बस लेना जानूं। मैं तुम्हें पाकर खुद लुट जाना चाहता हूं। तुम हंसती हंसाती आई हो हंसने और हंसाने को, मैं बैठा हूं पाने को फिर पाकर लुट जाने को।
0: हे सुमुखी, सुनो सुनो ना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि एक तुम्हारे होने से सारा जग अपना लगता है। देखो, किसी दुविधा में ना पड़ना। ये सुंदर पल बड़ी ही किस्मत से हमें मिले हैं, तो सोचो मत आज इस पार या फिर उस पार, अब परवाह नहीं है। तुम अपनी हो, जग अपना है, किस पर किसका अधिकार प्रिय, फिर दुविधा का काम कहाँ, इस पार या फिर उस पार प्रिय।
2: हे सुंदरी, मेरा जीवन तो पल भर का है, क्योंकि पल भर के लिए ही तुम्हारा साथ है। इस पल को मुझे जी लेने दो। देखो तुम चुप ना बैठो, तुम्हारी चुप्पी मुझसे सही नहीं जा रही है। कुछ हंसो बोलो प्रिय, तुम्हारे भी अधर प्यासे हैं और मेरे भी। मेरे प्यासे अधरों को अपने प्यासे अधरों से तुम खरीद लो। पल भर जीवन फिर सूनापन, पल भर तो हंस बोल प्रिय, कर लो निज प्यासे अधरों से प्यासे अधरों का मोल प्रिय।
0: कहते हैं ना, जिस तरह हर चीज की उम्र होती है, उसी तरह प्रेम की भी। प्रेम भी उत्पन्न होता है, विकसित होता है और फिर एक दिन दम तोड़ देता है। कुछ लोगों का जीते जी तो कुछ लोगों का मरने के बाद। हमारे आज के समाज में पहले प्रकार की समस्या कुछ ज्यादा ही विकराल हो गई है। तमाम रिश्ते बीच मझधार में ही साथ छोड़ जा रहे हैं। कारण अनेक है, पर सबसे प्रमुख है अंडरस्टैंडिंग का अभाव। वे जो साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, सहसा पाते हैं कि वे तो एक दूसरे के लिए कितने अनजान हैं। गलत भी कहा है, जब हम खुद को ही नहीं जान पाते तो दूसरों को जानने का दावा कैसे कर सकते हैं। कवि भी समाज का ही हिस्सा होता है, वो भी इन समस्याओं से गुजरता है, तभी तो वो लिखता है। बस इतना अब चलना होगा, फिर अपनी अपनी राह हमें। कल ले आई थी खींच आज, कल ले आई थी खींच आज, ले चली खींच कर चाह हमें। तुम जान न पाई मुझको और, तुम जान न पाई मुझको और, तुम मेरे लिए पहेली थी पर इसका दुख क्या। मिल न सकी जब अपनी ही था हमें।
2: पर हाय रे पागल मन, जाते जाते भी मनुहार करना नहीं भूलता। कहता है कभी कभी याद कर लेना मुझे कि हमने एक दूसरे से प्यार किया था। पता नहीं फिर मिलना होगा कि नहीं, इसलिए रूठ कर नहीं, हंसकर विदा करो मुझे। जाओ, जहां रहो खुश रहो आबाद रहो। था प्रेम किया हमने तुमने, इतना कर लेना याद प्रिय, फिर मिलना होगा या कि नहीं, हंसकर तो दे लो आज विदा। तुम जहां रहो आबाद रहो, ये मेरा आशीर्वाद प्रिय। श्रोताओं, सुना आपने, कवि अपनी प्रेयसी से ये मांग कर रहा है कि रूठ कर नहीं, हंसकर विदा करो। यहां भारतेंदु हरिश्चंद्र याद आते हैं, जो अपनी प्रियतमा से कहते हैं, प्यारे जो जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। अर्थात हे प्रिय, ये तो संसार की रीति है कि विदाई के समय सभी कंठ लगाते हैं, तो तुम भला रूठ कर मुझे क्यों विदा कर रही हो।
0: सोचिए जरा कैसा महसूस होगा जब आपको ये लगे कि आपकी बिछड़ी प्रेमिका आपको याद करती है। अच्छा ही लगेगा ना, कवि को भी लगता है। उसे जब ये संदेश मिलता है कि उसकी सुमुखी उसे याद किया करती है, भले ही रोकर या फिर क्रोधित होकर, ऐसा लगता है सूने जीवन में कलरव छा गया। कल सहसा यह संदेश मिला, सूने से युग के बाद मुझे, कुछ रोकर कुछ क्रोधित होकर, तुम कर लेती हो याद मुझे।
2: आगे सुनिए, उलाहना तो फिर भी देना है। उलाहना ये कि अब तो बस यादों का ही रिश्ता रह गया है। खैर, ये भी कुछ कम नहीं मेरे लिए। जब मैं खुद को ही भूल गया हूं तो तुम मुझे याद करती हो, ये कोई कम थोड़े ही है। ये ममता का वरदान सुमुखी है, अब केवल अपवाद मुझे, मैं तो अपने को भूल रहा, तुम कर लेती हो याद मुझे।
3: वाह रे विधाता, तुम ही ने मिलना बनाया और जुदाई भी तुम ही ने मनाई। वाह रे ऊपर वाले, तुम ही ने मिलना बनाया और जुदाई भी तुम ही ने बनाई। तुम्हारी लीला समझ से परे है।
4: उसने मेरी जिंदगी में तो रोने का रोग लिख दिया, और तुम्हारी जिंदगी में हंसने का भोग। मुझे पीड़ा दिया उसने और तुम्हें सुख, तो इस सुखद घड़ी में एक कसक की तरह मुझे क्यों याद करती हो।
3: जिस विधि ने संयोग रचा, उसने ही रचा वियोग प्रिय। मुझको रोने का रोग मिला, तुमको हंसने का भोग प्रिय। सुख की तन्मयता तुम्हें मिली, पीड़ा का मिला प्रमाद मुझे। फिर एक कसक बनकर अब क्यों तुम कर लेती हो याद मुझे।
2: श्रोताओं, इंसान तन्हाई से बहुत डरता है, पर सच तो ये है कि तन्हाई में ही वो खुद को पाता है। तभी तो कहते हैं कि कभी कभी अकेला भी होना जरूरी है, नहीं तो हम खुद को ही खो बैठेंगे। कवि भी इसका अपवाद नहीं है, उसकी प्रेयसी आज नहीं है। माना कि उसके न होने से शाम उदास हो गई है, लेकिन अपने पास तो है वो। देखिए जरा इस दार्शनिक तथ्य को भगवती चरण वर्मा ने कितने सीधे सादे शब्दों में लेकिन प्रभावशाली तरीके से कहा है। आज शाम है बहुत उदास, आज शाम है बहुत उदास, केवल मैं हूं अपने पास।
3: भगवती चरण वर्मा केवल वियोग के ही कवि नहीं है, संयोग के चित्रों का भी उन्होंने पूरी तन्मयता से अंकन किया है। जब क्षण मिलने के हों तो लाज की गांठ खोलनी ही पड़ती है। सुनिए तो सही, कवि क्या कहते हैं। छिप सकी हृदय की आग कहीं, छिप सकी हृदय की आग कहीं, छिप सका प्यार का पागलपन। तुम व्यर्थ लाज की सीमा में हो बांध रही प्यासा जीवन।
2: नायिका नई नवेली है, किशोर वह है, लाज से नहाई हुई। मिलन के समय वो मधु में भीगी किसी नई कली की तरह कांप उठती है। उसके रक्त कपोड़ों पर प्रेम की लाली कांप कांप कर बिखर पड़ती है। तुम नवकलिका सी सिहर उठी, तुम नवकलिका सी सिहर उठी, मधु की मादकता को छूकर वह देखो अरुण कपोलों पर अनुराग सिहर कर बड़ा बिखर।
3: नायक कहता है, हे सुमुखी, मैं तुम्हें देखूं और मंत्रमुग्ध होकर चुप हो जाऊं। मैं कुछ कहूं नहीं, बस तुम्हें सुनता जाऊं। और जब मैं अपनी बात तुम्हें सुनाऊं तो तुम आश्चर्य में भर कर मुस्कुरा उठो। मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे सुन रही हो। तुम एक अमर संदेश बनो, मैं मंत्र मुग्ध सा मौन रहूं। तुम कौतूहल सी मुस्का दो जब मैं सुख दुख की बात कहूं।
2: श्रोताओं, हर प्रेमी अपनी प्रेमिका से ये सुनने को बेताब रहता है कि उसकी प्रेमिका बस उसकी दीवानी है। वो उसके मुंह से बस यही सुनना चाहता है कि हे प्यारे, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई जंचता ही नहीं। शायद ऐसा हो भी, पर प्रेमिका पता नहीं क्यों इसे स्वीकार करने में हिचकिचाती है। उस जमाने में तो और भी ऐसा होता था जब भगवती चरण वर्मा ने ये पंक्तियां लिखी। थोड़ा साहस इतना कह दो, तुम प्रेम लोक की रानी हो, जीवन के मौन रहस्यों की तुम सुलझी हुई कहानी हो, होठों पर हो मुस्कान तनिक, नयनों में कुछ कुछ पानी हो, फिर धीरे से इतना कह दो, तुम मेरी ही दीवानी हो, तुम मेरी ही दीवानी हो।
3: श्रोताओं, मानव मन सदा एक सा नहीं रहता। कभी तो वो प्रेम को ही सत्य मान लेता है और महबूबा को ही खुदा, तो कभी सत्य को जानने के लिए बेचैन हो उठता है और सब कुछ छोड़कर ईश्वर की ओर भागने लगता है। सबके जीवन में ये स्थिति आती है, विशेषकर यौवन का आरंभ श्रृंगार से होता है, तो उसका समापन होते होते अध्यात्म की बारी आ जाती है। कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से ये क्रम आता है, तो कुछ दिल पर चोट लगने से ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। कवियों के साथ तो ऐसा बहुत होता है। प्राचीन काल में भर्तृहरि, मध्यकाल में घनानंद और आधुनिक काल में महादेवी वर्मा, ये तीन इसके उदाहरण हैं।
2: महादेवी तो रहस्यवादी हैं। ये भी एक प्रकार का अध्यात्म ही है, जिसमें मनुष्य उस अलौकिक सत्ता को जानने समझने के लिए बेचैन हो उठता है। इसे दर्शन भी कह सकते हैं आप। इसमें मन में सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है मुझे। वो कौन है जो मुझे कठपुतली की तरह नचा रहा है? वो कौन है जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है? ईश्वरीय सत्ता के प्रति एक जिज्ञासा है ये। भगवती चरण वर्मा को सुनिए।
5: मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मैं कब से ढूंढ रहा हूं अपने प्रकाश की रेखा, तम के पट पर अंकित है निस्सीम नियति की लेखा, किसका आलोक गगन से, किसका आलोक गगन से रविशशि उडगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिराते, उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर देखा हूं चित्रों को बन बन कर मिट जाते।
3: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कविताएं। अब आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: रॉल्फ कॉर्टराइट का अनैतिक व्यवहार और ढहता हुआ व्यापारिक साम्राज्य 1633। क्या आप जानते हैं कि 1633 में रॉल्फ कॉर्टराइट नामक एक अंग्रेजी व्यापारी मसूलीपट्टनम से एक ऐसे मिशन पर निकला था जो बंगाल और उड़ीसा की उपजाऊ भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य निर्धारित करने वाला था। जहां इतिहास इस यात्रा को इसके व्यावसायिक महत्व के लिए याद रखता है, वहीं डच अभिलेखागार में इस घटना का एक कहीं अधिक अपमानजनक संस्करण सुरक्षित है, जिसे एमोरस मिस एडवेंचर अर्थात प्रेमपूर्ण दुस्साहस के रूप में जाना जाता है। कॉर्टराइट का गंतव्य कटक में उड़ीसा के नवाब का दरबार था। आगरा के मुगल शाही केंद्र की कठोर और पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं के विपरीत यह प्रांतीय कूटनीति की दुनिया थी। कटक के भव्य महल में कॉर्टराइट ने खुद को एक बेहद आत्मीय माहौल में पाया, जहां वो नवाब से कुछ ही फिट की दूरी पर दरबार के फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। व्यापारिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए कॉर्टराइट ने आवश्यक रस्में निभाईं। उसने नवाब के पैर चूमे और उपहारों का एक मामूली संग्रह भेंट किया, जिसमें लौंग, जायफल, एक सुनहरा दर्पण और एक दोनाली पिस्तौल शामिल थी। ये मिशन एक बड़ी जीत जैसा लगा। नवाब कॉर्टराइट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे खिलअत यानी सम्मान की पोशाक पहनाई, जिसने प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज को नवाब के सामने सेवा और वफादारी के नेटवर्क में शामिल कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉर्टराइट एक परवाना हासिल करने में सफल रहा, जिसने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने और हरिहरपुर के बंदरगाह में एक फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि बटाविया कैसल में डच द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के अनुसार ये सफलता कॉर्टराइट के निजी आचरण के कारण नाटकीय रूप से बर्बाद हो गई। जैसे ही हरिहरपुर में अंग्रेजी लॉज का निर्माण पूरा होने वाला था, नवाब ने अचानक पूरी संरचना को नष्ट करने और गिरा देने का आदेश दे दिया। बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों में ये फुसफुसाहट थी कि कॉर्टराइट को फैक्ट्री में अनैतिक व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसका परिणाम त्वरित और गंभीर था। कॉर्टराइट को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 1,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही उसे अपनी आजादी वापस मिली। जहां अंग्रेजी कंपनी के रिकॉर्ड इस विशिष्ट शर्मिंदगी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं डच प्रशासकों ने इस कहानी को पूरी तरह से विश्वसनीय माना। कॉर्टराइट की यह घटना 17वीं सदी की कंपनी राज्य की एक बुनियादी सच्चाई को दर्शाती है। वैश्विक वाणिज्य अंतर व्यक्तिक संबंधों की नाजुक नींव पर टिका था। प्रांतीय कूटनीति की उस दुनिया में जहां एक व्यापारी की सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण थी, एक अनैतिक व्यवहार एक उभरते व्यापारिक साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती थी।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

अपने अपने समय की सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी अलग पहचान बनाने वाली चार कवियत्रियों की जीवन यात्रा रविवार को मंच पर जीवंत हुई। 20वें पंडित ईश नारायण जोशी स्मृति लोक मंगल न्यास और रंगश्री लिटिल बैलेट ट्रूप की ओर से नृत्य नाटिका सपना मेरा यही सखी का मंचन किया गया। करीब 1 घंटे 20 मिनट की इस प्रस्तुति में 18 कलाकारों ने नृत्य संगीत और अभिनय के माध्यम से अक्का महादेवी आंडाल और मीरा के जीवन संघर्ष और रचनात्मक यात्रा को मंच पर साकार किया। लेखक राजेश जोशी ने यह नाटक करीब 10-15 वर्ष पहले एकल अभिनय के लिए लिखा था। इसका उद्देश्य स्त्री अस्मिता और उसकी पहचान के सवालों को समझना था। उस समय मीता वशिष्ठ ने इसके एकल अभिनय में भूमिका निभाई थी। अब 18 कलाकारों ने इसे मंच पर प्रस्तुत किया है। नृत्य नाटिका में मीरा के किरदार को खास बनाने के लिए करीब 9 मीटर लंबी ड्रेस डिजाइन की गई। मंच पर घूमते हुए कलाकार के साथ पोशाक का फैलाव मीरा की भक्ति और भावनाओं को दृश्य रूप देता है। यह प्रस्तुति के सबसे आकर्षक मंचीय दृश्यों में से एक रहा। भारत भवन में सिंधी साहित्य अकादमी के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय चतुर्थ अखिल भारतीय सिंधी नाट्य समारोह का रविवार को समापन हो गया। रंगकर्मी सुंदर अगनानी की स्मृति में आयोजित समारोह के अंतिम दिन दिल्ली के रंगकर्मी शंकर मूलवानी को सुंदर अगनानी सम्मान 2026 दिया गया। समापन अवसर पर 3 नाटकों का मंचन किया गया। शंकर लालवानी के निर्देशन में प्रस्तुत शादी शर्त सा ने विवाह की अनोखी शर्त के माध्यम से समाज में व्याप्त दहेज प्रथा पर कटाक्ष किया।

नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधियों की संभावना के तहत ट्राइबल म्यूजियम में आयोजन किया गया। इस दौरान दमोह के शिवांश विश्वकर्मा और साथियों ने भक्ति गायन पेश किया। इसके बाद विदिशा के परमानंद किवट और साथियों ने बुंदेलखंड का पारंपरिक ढिमरियाई नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य नर्तक ने रेखड़ी वाद्य के साथ पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया। वहीं डिंडोरी के जियालाल और साथियों ने गोंड जनजाति कर्मा नृत्य की प्रस्तुति दी। श्रम और कर्म देवता को समर्पित इस नृत्य में युवक युवतियों ने गीतों की जुगलबंदी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस गतिविधि के माध्यम से दर्शकों को मध्य प्रदेश के 5 लोकांचलों और 7 जनजातियों की कला परंपराओं के साथ देश के अन्य राज्यों के सांस्कृतिक रूपों को देखने का अवसर मिल रहा है।

वहीं घने जंगलों में विमुक्त वन्य प्राणी बच्चों के बीच थे। हाथी हथेली पर उतर आया तो वहीं हाथ ने एनाकोंडा का रूप ले लिया। इसी के बीच कहीं टाइगर और हिरण एक साथ भी दिखे। मौका वन विहार में चित्रकला प्रतियोगिता का था। आयोजन वन्य जीव सप्ताह के तहत रविवार को हुआ। 200 से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए। जंगल और जंगली जीवों को बचाने के लिए सड़क पर उतर आवाज उठाई। वन्य जीव सप्ताह 2026 के तहत रविवार को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आवास वन्य जीवन का विकास थीम पर पाम पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, जहां स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट ने भाग लिया। संगीत प्रेमियों के लिए एक खास शाम का आयोजन होने जा रहा है। एंजल म्यूजिक ग्रुप और देवोत्तर सेवा संस्था के तत्वावधान में 24 अक्टूबर को रविंद्र भवन में अनमोल यादें का आयोजन होगा। संयोजक इंजीनियर आशु खान ने बताया कि मोहम्मद रफी, किशोरदा, मुकेश, लता मंगेशकर सहित सभी गायकों को गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाएगी। आयोजन में मुंबई और भोपाल के कलाकार यहाँ प्रस्तुतियाँ देंगे।

रविंद्र भवन में रविवार की शाम तालियों की गड़गड़ाहट, सुरमई धुनों और नॉस्टैल्जिया के नाम रही। मौका था महानायक अमिताभ बच्चन के गानों से सजी संगीतमय शाम का, जहां 80 के दशक के मशहूर आवाज शब्बीर कुमार के मंच पर आते ही पूरा हॉल जोश से भर गया। उन्होंने फिल्म कुली का कालजयी तराना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं छेड़ा, तो हर कोई अपनी सीट पर झूमने को मजबूर हो गया। इस भव्य लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन एमटी ग्रुप भोपाल और एक्टिव फ्रेंड्स ऑफ भोपाल की ओर से किया गया। ये विशेष शाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की स्मृति को समर्पित रही।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय MCU की ओर से 6 से 8 अक्टूबर को 3 दिनों के टेड एक्स टॉक का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य विषय आइडियाज डूज शेप अवर वर्ल्ड है। टेड एक्स में अलग अलग विषयों के वक्ताओं का व्याख्यान होगा। MCU में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेड एक्स टॉक शो का आयोजन किया जा रहा है। संवाद में जाने माने टेड एक्स वक्ता आएंगे।

माची यानी जापानी समुदाय में बस गए। एक ऐसी दुनिया जहां व्यापार और हिंसा के बीच की रेखाएं हमेशा धुंधली रहती थीं। इस माहौल में जापानी प्रवासी एक बदलती निरंतरता में रहते थे, जो जरूरत पड़ने पर मर्सनरी बन जाते थे और मुनाफा दिखने पर वापस व्यापारी की भूमिका में आ जाते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नागामासा एक दुर्जेय व्यवसायिक प्रतिद्वंदी थे। वे केवल एक सैनिक ही नहीं थे, वे एक समृद्ध व्यापारी थे जिन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक वाणिज्यिक नेटवर्क का प्रबंधन किया था। उन्होंने जापान में भारी मांग वाली वस्तु हिरण की खाल के आकर्षक व्यापार पर नियंत्रण के लिए VOC के साथ कड़ा मुकाबला किया। इस मर्सनरी मर्चेंट ढांचे ने उन्हें अपनी निजी सेना बनाए रखते हुए व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की अनुमति दी। सियाम के राजा अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से जापानी लड़ाकों पर निर्भर होने लगे थे, जिन्हें वे साहस और निष्ठा के लिए सबसे सम्मानित मानते थे। यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने इन सैनिकों को वीर और भयंकर योद्धाओं के रूप में वर्णित किया है, जो किसी भी संघर्ष के परिणाम को बदलने में सक्षम थे। जापानी समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत एक दुस्साहसी कृत्य से हुई थी। डच वृत्तांतों और अयोध्या के इतिहास के अनुसार जापानी सैनिकों ने सियाम के सम्राट का अपहरण कर लिया था और उन्हें तब तक बंधक बनाए रखा जब तक कि वे उन्हें अपने एलीट पैलेस गार्ड और जीवन भर के लिए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने पर सहमत नहीं हो गए। इस उच्च स्तरीय माहौल में नागामासा रैंकों में ऊपर उठते गए और सियाम के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। नागामासा का करियर अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचा जब उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और उत्तराधिकार की विश्वासघाती राजनीति को संभाला। वे एक सैन्य और वाणिज्यिक उद्यमी की अनूठी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह युद्ध का नेतृत्व कर सकता था और दोपहर में व्यापारिक सौदे पर बातचीत कर सकता था। अंततः एक किंगमेकर का जीवन जितना लाभदायक था उतना ही खतरनाक भी। नागामासा की मृत्यु 1630 में हुई। वे उसी दरबारी साजिश के शिकार हुए जिसे आकार देने में उन्होंने मदद की थी। उनकी कहानी उस युग का प्रमाण है जहां साहसी यात्री समुद्र पार कर सकते थे और अपनी युद्ध प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर विदेशी भूमि में सत्ता हथिया सकते थे। नागामासा केवल एक विदेशी घुसपैठिए नहीं थे, वे सियामी राज्य के एक अनिवार्य अंग थे, जो ये साबित करता है कि उस समय एक तेज तलवार और व्यापार की गहरी समझ ही राजनीतिक अस्तित्व का अंतिम हथियार थे।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद,
2: आजाद हिंद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं इतिहास। आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर अभिनंदन।
3: और श्रोताओं, इतिहास के साथ मैं हूं तारीख। स्वागत है आप सभी का।
2: तारीख, आपका भी स्वागत है।
3: और इतिहास, मैं आपका भी स्वागत करती हूं।
2: जी, रोज की तरह आज फिर एक और हस्ती की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में पर्दे के पीछे रहकर अपनी अहम भूमिका निभाई।
3: पर्दे के पीछे रहकर?
2: जी।
3: वो कैसे?
2: स्वराज के लिए हुए 1857 के मुक्ति संग्राम में असंख्य भारतीयों ने अपने तई अपना कर्तव्य निभाया। ये वो समय था जब पूरा देश आजादी के संघर्ष में लगा हुआ था। हर तरफ एक ही क्रांति थी, आजादी और सिर्फ आजादी। आजादी के इस महायज्ञ में हर देशवासी अपनी समीधा डाल रहा था।
3: दरअसल स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ऐसा साझा प्रयास था ये, जो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के सांझे संकल्प और निश्चय के साथ लड़ा गया।
2: इनमें जहां एक तरफ जाबाज पुरुष थे, वहीं दूसरी ओर अनेक वीरांगनाओं ने भी अपने शौर्य का परिचय देकर देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्त्री और पुरुष के सम्मिलित संघर्ष में महिलाओं की दोहरी भूमिका रही है। उन्होंने जहां जहां अपने गांव घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर पुरुषों को मैदान में भेजा, तो कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से वे भी युद्ध में शामिल हुईं।
3: जहां एक ओर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ की बेगम हजरत महल युद्ध का नेतृत्व कर रही थी, वहीं झलकारी बाई के अद्वितीय शौर्य, असाधारण कौशल और अदम्य उत्साह ने समय की शिला पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।
2: इन वीरांगनाओं के अलावा कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने आजादी के समर में प्रत्यक्ष रूप से न सही लेकिन पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान दिया है।

0: इतिहास जी। अब आप बता ही दीजिए कि आज आप हमारे श्रोताओं को कौन सी वीर गाथा सुनाने जा रहे हैं।
1: बताता हूँ आज हम अपने श्रोताओं को सुनाने जा रहे हैं मीरा दत्त गुप्ता के बारे में। मीरा दत्त गुप्ता का जन्म 5 अक्टूबर 1906 को ढाका में हुआ। इनके पिता शरद कुमार दत्त सरकारी अधिकारी थे, लेकिन देश की आजादी की ललक अपने मन में लिए क्रांतिकारी दल की चुपचाप मदद करते रहते थे। उनकी माता भी इन्हीं विचारों की थी। माता पिता के यही संस्कार मीरा दत्त को भी मिले। पढ़ाई लिखाई में तेज और मेहनती मीरा दत्त ने 1930 में गणित विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की।
0: विद्यार्थी जीवन में ही मीरा दत्त ने रचनात्मक गतिविधियों में अपनी भागीदारी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। कॉलेज के दिनों में वेणु नाम की एक पत्रिका निकलती थी, जिसके महिला विभाग के संपादन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। इस प्रकार महिलाओं में स्वदेश प्रेम की भावना का संचार उन्होंने किया।
1: अपनी पढ़ाई के साथ क्रांतिकारी दल में भी उनका योगदान कम नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: अवैध हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह चुपचाप पहुंचाने, लाने ले जाने, यहां तक कि समय पड़ने पर उन हथियारों को अपने घर में छुपाने का काम भी मीरा दत्त किया करती थी।
0: सन 1930 में एमए की परीक्षा पास करने के बाद क्रांतिकारी दल के अपने साथियों के आग्रह पर उन्होंने विद्यासागर कॉलेज में उप प्राचार्य के पद पर काम करना शुरू कर दिया
1: जी।
0: कॉलेज से उन्हें जो भी वेतन मिलता, सारा का सारा पैसा वे क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर खर्च कर दिया करती थी।

0: 1934 में एक घटना हुई। गवर्नर एंडरसन को गोली मार दी गई। अंग्रेजी अधिकारी के साथ हुई इस घटना से हल्ला हो गया। अंग्रेज सिपाहियों ने बड़ी सरगर्मी के साथ हथियारों की तलाश शुरू कर दी। मीरा दत्त गुप्ता को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। सबूतों के ना मिलने से उन्हें जेल तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें 2 साल के लिए बंगाल से निष्कासित कर दिया गया। इन 2 सालों में भी उन्होंने क्रांतिकारी दल के अपने मित्रों से लगातार संपर्क बनाकर रखा। उनके सारे कार्यकलापों की जानकारी उनके साथी उन तक समय समय पर पहुंचा दिया करते थे। मीरा दत्त भी यथासंभव अपनी ओर से उन्हें समय समय पर आर्थिक सहायता दिया करती थी।
1: 1937 का वर्ष मीरा दत्त के सार्वजनिक जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। बंगाल से निष्कासन की अवधि समाप्त हो चुकी थी। एक बार फिर अपनी कर्म भूमि बंगाल वापस आने का अवसर उन्हें मिला।
0: जी।
1: 1937 में स्वशासन की नीति के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों का चयन हुआ। मीरा दत्त भी इस चुनाव में उम्मीदवार थी। अपनी योग्यता, अनुभव और कार्यकुशलता ने उन्हें इस चुनाव में विजय दिलाई। वे विधानसभा की सदस्य चुनी गईं।
0: और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता की हिस्सेदारी और समर्थन एक नई सीमा तक पहुंचा। पूर्ववर्ती आंदोलन की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भी युवा वर्ग बहुत सक्रिय था।
1: अच्छा
0: जी। स्कूलों और कॉलेजों के युवा छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका इस आंदोलन में निभाई। खासतौर पर छात्राओं में अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भूमिगत कार्यवाही के संगठन का काफी महत्वपूर्ण काम किया। पुलिस दमन झेलते हुए भी मजदूरों ने लंबी हड़ताल कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मीरा दत्त गुप्ता भी भारत छोड़ो आंदोलन में अपने क्रांतिकारी दल के साथ अपने पूरे जोश के साथ सक्रिय रही। इस आंदोलन में सरकार ने लाठी चार्ज और गोलियां ही नहीं छोड़ी, बल्कि भारतवासियों के अपमानजनक हनन के सभी हथकंडे अपनाए। परिणाम स्वरूप जन आक्रोश बढ़ता गया। हर भारतीय के मन में बस एक ही लगन थी। जो अब तक लोग सत्याग्रह में गाते थे, वो अब जनगान बन गया।

0: 1946 में बदलते हालातों को देखते हुए मीरा दत्त गुप्ता अपने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गई। विभाजन से पहले नोआखली में दंगे भड़के, भीषण मारकाट और हिंसक वारदातें हुई, सैकड़ों मारे गए और कई घायल हुए। ऐसे समय मीरा दत्त गुप्ता ने अपने साथियों के साथ दंगा पीड़ित इलाकों में जाकर जनता की सेवा की। यही नहीं, बंगाल में जिन दिनों अकाल और भुखमरी की आंधी चली, मीरा दत्त गुप्ता ने अविस्मरणीय काम किया।
1: 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद मीरा दत्त गुप्ता ने बंगाली समुदाय के उत्थान के लिए अनेक सामाजिक काम किए। शिक्षा प्रणाली में सुधार कार्य के लिए मीरा दत्त गुप्ता को विशेष रूप से याद किया जाता है। महिला साक्षरता को लेकर उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने मीरा दत्त गुप्ता को न ही स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा के रूप में ख्याति दिलाई, बल्कि शिक्षा और महिलाओं के उत्थान को लेकर किए गए उनके सराहनीय प्रयासों ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाई। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद मीरा दत्त गुप्ता ने बंगाली समुदाय के उत्थान के लिए अनेक सामाजिक काम किए। शिक्षा प्रणाली में सुधार कार्य के लिए मीरा दत्त गुप्ता को विशेष रूप से याद किया जाता है। महिला साक्षरता को लेकर उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने मीरा दत्त गुप्ता को न ही स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा के रूप में ख्याति दिलाई, बल्कि शिक्षा और महिलाओं के उत्थान को लेकर उनके द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाई।
0: तारीख, अब तो आप समझ गई होंगी कि भारत की आजादी के समर में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1: बिल्कुल।
0: और आजादी की लड़ाई के इतिहास में जब जब महिलाओं के योगदान की बात होगी, मीरा दत्त गुप्ता को हमेशा सम्मान के साथ हम सभी याद करेंगे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, कार्यक्रम आजाद हिंद। अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हुगली की घेराबंदी 1632, जब मुगलों ने फिरंगियों को खदेड़ दिया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गंगा डेल्टा का आद्र और नदी प्रधान क्षेत्र एक कानून विहीन सीमांत था, जहां नमक की हवा के साथ हिंसा का खतरा हमेशा घुला रहता था। लगभग एक सदी तक पुर्तगाली, जिन्हें स्थानीय रूप से फिरंगी कहा जाता था, किराए के सैनिक और निजी व्यापारियों के एक स्वायत्त बल के रूप में सक्रिय थे। वे बंगाल के तट के निर्विवाद मालिक थे, लेकिन उनकी शक्ति की नींव कुछ ऐसी गतिविधियों पर टिकी थी जिसने मुगल शाही केंद्र के क्रोध को भड़का दिया था। फिरंगी समस्या केवल व्यापारिक नहीं थी, यह गहराई से राजनीतिक थी। ये स्वायत्त पुर्तगाली समूह गुलामों के शिकार के लिए कुख्यात थे, एक ऐसी गतिविधि जो मुगल राज्य के साथ बार बार तनाव पैदा करती थी। 1632 तक इन उद्दंड विदेशियों द्वारा शाही अधिकार को दी गई राजनीतिक चुनौती नए सम्राट शहंशाह के लिए असहनीय हो गई थी। फिरंगियों पर लगाम लगाने का काम बंगाल के सूबेदार कासिम खान को सौंपा गया। 1632 में हुगली की घेराबंदी मुगल सैन्य संकल्प का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन था। हुगली इस क्षेत्र में पुर्तगालियों की मुख्य बस्ती थी, व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र जो लंबे समय से मुगल नौकरशाही की सीधी पकड़ से बाहर था। कासिम खान की सेना ने एक व्यापक हमला किया, जिसका उद्देश्य रणनीतिक डेल्टा पर शाही नियंत्रण स्थापित करना था। लक्ष्य स्पष्ट था, पुर्तगालियों की राजनीतिक अवहेलना को रोकना और उनकी मजबूत स्थिति से उन्हें उखाड़ फेंकना। मुगलों के लिए घेराबंदी एक विनाशकारी सफलता थी। भूमि आधारित दबाव और नदी मार्गों के नियंत्रण के संयोजन के माध्यम से कासिम खान की सेना ने पुर्तगाली प्रतिरोध को कुचल दिया, जिससे फिरंगियों को समुद्र की ओर भागने या बंदी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जीत दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने गंगा डेल्टा पर निश्चित मुगल नियंत्रण का दावा किया और सभी यूरोपीय शक्तियों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि साम्राज्य में उनकी उपस्थिति सम्राट की इच्छा के अधीन है। हुगली के पतन ने लंबे समय तक खालीपन नहीं छोड़ा, इसके बजाय इसने क्षेत्र में नए खिलाड़ियों की स्थापना को गति दी। पुर्तगालियों की हार के ठीक एक साल बाद 1633 में स्थानीय अधिकारियों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुगल अधिकारी हालांकि यूरोपीय हिंसा से सावधान थे, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और कर आय बढ़ाने के साधन के रूप में इन नव आगंतुकों का स्वागत करते थे। 1632 की घेराबंदी की विरासत यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक डरावनी याद बनी रही। भले ही डच और अंग्रेजों ने हरिहरपुर और बालासोर जैसे शहरों में अपने ठिकाने बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसा इस ज्ञान के साथ किया कि उनके संबंधों की शर्तें मुख्य रूप से मुगल राज्य शक्ति द्वारा तय की गई थी। हुगली में पुर्तगालियों की चौंकाने वाली हार इस बात की याद दिलाती रही कि 17वीं शताब्दी के कंपनी राज्य में फिरंगी हमेशा उस सीमांत पर केवल अतिथि थे, जिसे अब मुगल अपने स्वामित्व में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, और अब समय है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार का। और आज हम अपने कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में बात करेंगे महान शब्द शिल्पी, भारतीय संस्कृति की मिसाल बहादुर शाह जफर की। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के नायक, आखिरी मुगल सम्राट, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, सच्चे देशप्रेमी एवं उर्दू एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रख्यात शायर बहादुर शाह जफर का पूरा नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह गाजी था। अबू जफर उनका तारीखी नाम था, जिसके अनुसार वो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 18 शाबान 1189 हिजरी 14 अक्टूबर 1775 ईस्वी में लाल किला दिल्ली में पैदा हुए थे। वो पिता बादशाह अकबर शाह सानी और माता लालबाई के सबसे बड़े बेटे थे। उनका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा शाहाना ठाठ बाट के साथ हुई और उन्हें उस युग के सभी प्रचलित उलूम फुनून, सैन्य कौशल एवं कलाओं से सुसज्जित किया गया। उनका साहित्यिक नाम जफर और घर का नाम मिर्जा अब्बन था।
3: बहादुर शाह जफर ने लाल किले के खास तहजीबी सांस्कृतिक परिवेश में परवरिश पाई। मिर्जा फरतुल्ला बेग ने अपनी पुस्तक दिल्ली की आखिरी शमा में बहादुर शाह जफर का शारीरिक खुलिया इस तरह से बयान किया है। दरमियाना कद, बहुत नईफ कमज़ोर जिस्म, किस कदर लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी रोशन आँखें, आँखों के नीचे हड्डियाँ उभरी हुई, लंबी गर्दन, चौका ज़रा ऊंचा, पतली सुतवा नाक, बड़ा दहाना, गहरी सांवली रंगत, सर मुंडा हुआ, छिदरी दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियाँ थी। लेकिन बावजूद इस पीराना साली यानी वृद्धावस्था और नकाहत यानी कमज़ोरी की आवाज़ में वही करारापन था। कमज़ोर और बेबस होने के बावजूद उनकी प्रजा उनसे ख़ास श्रद्धा और लगाव रखती थी। इस संबंध में C.F. एंड्रोज ने लिखा है, बहादुर शाह का निहायत एहतराम यानी आदर किया जाता था। हिंदू मुसलमान दोनों ही उनके अखलाक की वजह से बेहद मोहब्बत करते थे। वो बहुत पुरअमन यानी शांत स्वभाव के इंसान थे।
2: बहादुर शाह जफर जिस तरह चालाकी और फरेब से दूर थे, वैसा ही दूसरों को समझते हुए उन पर भरोसा किया करते थे। बहादुर शाह जफर के दादा शाह आलम सानी उन्हीं की तरह कवि एवं लेखक भी थे। उनका साहित्यिक नाम आफताब और शुआ था। इस लिहाज से शायरी बहादुर शाह जफर को विरासत में मिली थी और वो अल्पायु में ही शेर कहने लगे थे। बहादुर शाह जफर को अरबी फारसी के अतिरिक्त उर्दू एवं अन्य प्रांतीय भारतीय भाषाओं में न केवल दक्षता हासिल थी, बल्कि वो उर्दू के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी शायरी करते थे। स्वभाव से वो एक सुलझे हुए, सभ्य, रहमदिल, खुश अखलाक एवं खुश मिजाज इंसान थे। बादशाह होने के बावजूद वो अभिमानी बिल्कुल नहीं थे।
3: मैं सभी धर्मों एवं संस्कारों का न सिर्फ आदर और सम्मान करते थे, बल्कि ईद मुहर्रम की तरह होली, दिवाली, दशहरा, श्रावण, सलोनों आदि त्योहारों में सउल्लास सम्मिलित होकर अपनी रियाया की खुशियों में घुल मिल जाया करते थे। सर्वधर्म संभाव राष्ट्रीय एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर त्योहार के नेतृत्व वह खुद किया करते थे।
2: उन्होंने उर्दू फारसी में ही नहीं, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली एवं पंजाबी में भी शायरी की है। भारत सम्राट होने और राजसी ठाठ बाट के बावजूद उन्होंने कभी भी मदिरा पान नहीं किया। धार्मिक संस्कारों के साथ साथ नृत्य एवं संगीत से भी उन्हें खास लगाव था। उनके दरबार में शेरो शायरी के साथ साथ नाच गानों की महफिलें भी पाबंदी एवं सुचारू रूप से आयोजित होती थी, जिनमें वो भरपूर दिलचस्पी लेकर शायरों और कलाकारों को सराहते और उन्हें सम्मानित करके पारितोषिक और इनामात से नवाजते थे।
3: वह केवल शाही कल्चर के नुमाइंदा नहीं थे, भारत की विविधता, ललित एवं नाट्य कलाओं, साहित्यिक विधाओं, रस्मों, रिवाज, बोली ठोली, रास रंग के भी रसिया थे। बहादुर शाह जफर रियाया परवर यानी प्रजा प्रेमी, नेक दिल, दयालु एवं दानी स्वभाव के इंसान थे। अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल होने को हर दम तैयार रहते थे। अहसनुल अखबार की खबर के अनुसार कुंवर सालिगराम, जो कि शाही दरबार में मुलाजिम थे, उनके लड़के कुंवर पाल सिंह की शादी में बादशाह सलामत ने खिलते फरोख सैरी, जामा कमरबंद, सहरे मुकैश रवाना फरमाया और कुंवर का लकब दिया और हुक्म दिया कि शाही खर्च से कुंवर पाल सिंह की शादी का जुलूस तुस्को एहतशाम यानी बहुत ही ठाट बाट के साथ निकाला जाए।
2: बादशाह के अखलाक का ये हाल है कि रियाया के साथ हर मौके पर इनाम और इकराम का सुलूक फरमाते हैं। 1857 में टकसाल का काम मुंशी अयोध्या प्रसाद की निगरानी में किया जाता था। दोस्तों, बहादुर शाह जफर की खूबियों में एक बड़ी खूबी ये थी कि वो एक इंसान दोस्त व्यक्ति थे, जो कि हर धर्म के लोगों को समान रूप से देखते और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस संबंध में एंड्रयूज ने लिखा है, उन दिनों ये बात आम थी कि दोनों फिरकों के लोग एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में शिरकत करते थे। बहादुर शाह अपने शाही हाथियों पर सवार होकर जुलूस की शक्ल में गुजरते और बाद में किले के मुसम्मन बुर्ज में बैठ जाते और हिंदुओं के बड़े त्योहारों और मुसलमानों की बड़ी तकरीबों के मौकों पर नीचे के मजमे यानी भीड़ का तमाशा देखा करते। मजमा उन्हें देखकर आदाब बजा लाता और इस तरह खैर सगाली यानी सद्भावना के जज्बात बहुत कुछ तरक्की पाते।
3: एंड्रयूज ने बहादुर शाह की न्यायप्रियता और इंसान दोस्ती के लिए लिखा है, दोस्तों, शहर दिल्ली में दो फिरके, हिंदू और मुसलमान, बादशाह की दानिशमंदाना रहनुमाई में पुरअमन तरीके से रहते सहते थे। उन्होंने शाही दरबार मुसलमान अफसरों को भी अच्छी तरह समझा दिया था कि वे हिंदुओं के एहसासात और जज्बात यानी भावनाओं का उन्हीं की तरह ख्याल रखें। बादशाह के इस रवैये के कारण दोनों समुदायों के दरमियान कभी कोई तनाव, तकरार या टकराव नहीं हो सका। सभी के सुख दुख एक जैसे थे एवं सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ घुल मिलकर रहा करते थे।
2: अंग्रेजों ने 1857 में लड़ाओ और राज करो के भरसक प्रयत्न किए, परंतु जब तक बहादुर शाह का राजपाट जारी रहा, अंग्रेज अपनी नापाक कोशिशों में कामयाब न हो सके। सभी समुदायों के लोगों में परस्पर समन्वय एवं सहयोग का माहौल बना रहा। ईद, दिवाली, होली और मुहर्रम का त्योहार लाल किले में भी धूमधाम से मनाए जाते थे। बहादुर शाह जफर मेले के आयोजनों के भी बड़े शौकीन थे। सलूनों एवं फूल वालों की सैर के आयोजनों के लिए महीनों पहले जोरदार तैयारियां की जाती थी।
3: सलोनी का त्योहार मनाने की एक विशेष पृष्ठभूमि ये है कि जब बहादुर शाह जफर के पूर्वज आलमगीर सानी द्वितीय को उनके वजीर गाजीउद्दीन खान ने धोखे से कोटला फिरोज शाह में ले जाकर कत्ल कर दिया और उनकी लाश वहीं छोड़ दी, तो वहां से गुजरने वाली एक हिंदू महिला राम कुंवर ने मृत बादशाह को पहचान लिया और उसकी सुरक्षा के लिए वहीं बैठ गई। जब तक बादशाह के वारिस उन्हें ढूंढते नहीं पहुंचे, वह वहीं उसकी देखभाल करती रही। बादशाह शाह आलम सानी ने उस महिला के इस परोपकार से प्रभावित होकर उसे अपनी बहन बना लिया और उस महिला ने भी बादशाह को अपना भाई स्वीकार करके राखी सलोने के हर त्योहार पर उन्हें राखी बांधने लगी। इस अवसर पर बादशाह उसे बहुत से तोहफे और सोने की अशर्फियां देते। ये सिलसिला बाद आने वाले बादशाहों ने भी जारी रखा। बहादुर शाह जफर भी उस महिला के परिवार जनों से इस पवित्र रिश्ते को निभाते रहे और इस त्योहार का आयोजन बड़े पैमाने पर करते रहे।
2: दोस्तों, बहादुर शाह जफर फूल वालों की सैर का मेला भी बहुत धूमधाम से मनाते थे। फूल वालों की सैर मेले के आयोजन की एक खास वजह ये थी कि जब बहादुर शाह जफर के भाई मिर्जा जहांगीर का दिल्ली के अंग्रेज रेजिडेंट से झगड़ा हो गया और उन्हें गिरफ्तार करके इलाहाबाद भेज दिया गया, तो मिर्जा जहांगीर की मां ने मन्नत मांगी कि यदि उनके बेटे की रिहाई हो गई तो वो मेहरौली में स्थित ख्वाजा बख्तियार काकी के मजार पर चादर एवं फूलों की मसहरी चढ़ाएंगी। अतः मिर्जा जहांगीर की रिहा होते ही उन्होंने अपनी इस मन्नत को पूरा किया। कुतुब साहब में जुलूस ने एक बड़े मेले का रूप धारण कर लिया।
3: इस अवसर पर दिल्ली की आम जनता ने भी फूलों का एक बड़ा पंखा अपनी ओर से चढ़ाया। इस मेले में हिंदू मुसलमान बड़ी तादाद में कई दिनों तक शामिल होते रहे। बादशाह ने हर्षोल्लास और मेलजोल के इस वातावरण से प्रभावित एवं प्रसन्न होकर हुक्म दिया कि यह मेला अब हर साल लगा करेगा। बादशाह ने यह भी आदेश दिया कि मुसलमान दरगाह शरीफ में और हिंदू जोग माया के मंदिर में पंखा चढ़ाएं और दोनों अवसरों पर दोनों धर्मों के लोग एक साथ मिलकर शिरकत किया करेंगे।
2: इस गंगा जमनी मेले को सैरेगुल फरूशा का नाम भी दिया गया, जो कि कौमी एकता और भाईचारे की खूबसूरत एवं प्रबल मिसाल बन गया। फूल वालों की सैर का ये मशहूर मेला भादों की 15 तारीख को आयोजित होता था। शमसी तालाब से पंखा उठता और मेहरौली के बाजार से गुजरता हुआ जंगली महल पर पहुंचकर बादशाह को सलामी देता। फिर पहले दिन से इसे जोग माया के मंदिर पर और दूसरे दिन का पंखा कुतुब साहब के मजार पर चढ़ाया जाता। इस मेले में बड़ी तादाद में लोग जमा होकर सम्मिलित होते। ये मेला बुधवार से शुक्रवार 3 दिनों तक जारी रहता, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते थे।
3: बहादुर शाह जफर को तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सैन्य गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न ललित कलाओं एवं साहित्यिक गतिविधियों में भी खास दक्षता एवं दिलचस्पी थी। वे अरबी, फारसी के अलावा कई भारतीय भाषाओं का न केवल ज्ञान रखते थे, बल्कि कई भाषाओं में शायरी भी किया करते थे। साहित्यिक, बौद्धिक एवं भाषाई ज्ञान के साथ साथ जानवरों से भी उन्हें खासा लगाव था। वह मुर्गबाजी, बटेरबाजी और अच्छे घोड़ों, हाथियों को पालने पोसने में भी अपना धन और समय और ध्यान खर्च किया करते थे।
2: वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे नृत्य, संगीत और मुशायरों की महफिलों में पाबंदी से शरीक होकर अपने और दरबारियों एवं परिवार जनों के मनोरंजन का प्रबंध अपने किले में किया करते थे। वो कट्टर धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, परंतु नमाज रोजे की पाबंदी जरूर करते थे। बादशाह होकर भी उन्होंने विलासिता के काम नहीं किए।
3: किताब आईने सिकंदरी के अनुसार बहादुर शाह जफर को अपने पिता अकबर शाह सानी के देहांत के बाद 29 सितंबर 1837 ईस्वी को हिंदुस्तान के बादशाह की हैसियत से राज सिंहासन पर बिठाया गया। लेकिन अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत और हिंदुस्तानी सियासत में बढ़ते हुए उनके असरात और अमल दखल के कारण बहादुर शाह जफर को पूरे हिंदुस्तान पर संपूर्ण तौर पर हुकूमत करने के बेहतर अवसर प्राप्त न हो सके। एक कमजोर और मजबूर बादशाह के रूप में उनकी सल्तनत शहर दिल्ली और लाल किले तक ही सिमट कर रह गई थी।
2: दोस्तों, भारत के कई सूबों के सूबेदारों ने स्थिति से फायदा उठाते हुए खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। दिल्ली के अमीरों और लाल किले में रहने वाले रहवासियों की साजिशों एवं अंग्रेजों की जासूसी के कारण बहादुर शाह जफर की हुकूमत डांवाडोल एवं कमजोर होती जा रही थी। शाही खजाना खाली होता जा रहा था। ऐसे नाजुक और परेशान कुन हालात में, जबकि बादशाह की पेंशन तय कर दी गई थी, बहादुर शाह जफर को केवल 20 साल हुकूमत करने का मौका मिला। इस अल्प अवधि में भी बहादुर शाह जफर ने अपने वतन हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर आंच नहीं आने दी।
3: उन्हें अंग्रेजों से सिर्फ 1 लाख रुपए मासिक पेंशन मिलती थी, परंतु उन्होंने अपने शाही वकार और स्वावलंबन को कायम रखते हुए हालात का समझदारी से सामना किया, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद भी हालात पर काबू नहीं कर सके और अंग्रेजों का प्रभाव एवं प्रभुत्व बढ़ता चला गया। अंग्रेज जब साहिले बंगाल से तबाही बरपा करते हुए जमुना पार करके दिल्ली शहर में दाखिल हुए, तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तानियों सहित बहादुर शाह जफर आदि सभी के लिए एक चुनौती बन गए। हर देशभक्त भारतीय अपनी अस्मिता और आज़ादी के लिए और अंग्रेजों के जुल्म ज्यादतियों और गुलामी से बचने की रणनीति तय करने में जुट गया।
2: और फिर 11 मई 1857 ईस्वी को देशभक्तों की बागी फौज मेरठ से चलकर लाल किले की दीवार तले आकर खड़ी हुई। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया और बहादुर शाह जफर से इस आंदोलन का सिपहसालार या मुखिया बनने की विनती की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारतीयों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, जबकि अंग्रेजों ने इसे गदर यानी सेपॉय म्यूटिनी की संज्ञा देकर उसके दोहन एवं दमन की भरपूर कोशिशें इस क्रूरता से की कि 1857 ईस्वी के संग्राम को भली भांति सफलता प्राप्त न हो सकी।
3: दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने 1857 ईस्वी के उस स्वतंत्रता संग्राम में नायक की भूमिका अदा की, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहिब पेशवा आदि समेत हजारों क्रांतिकारी और इनकलाबी देशभक्त शामिल थे। बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तान पर मंडराते खतरों को भांप लिया था। उन्होंने राजपूताना सहित सभी रियासतों के शासकों एवं उनकी प्रजा से इस स्वतंत्रता संग्राम में शरीक होने की अपील की और अपनी रणनीति से एक नई रूह फूंक दी, जिससे इनकलाबी फौजियों के हौसले बुलंद हो गए।
2: बहादुर शाह जफर हर तरह से हिंदुस्तान को अंग्रेज मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने देसी राजाओं और नवाबों के नाम खत लिखकर अपने तख्त और ताज को त्याग देने की इच्छा इस तरह व्यक्त की थी। मेरी ख्वाहिश है कि फिरंगी जिस तरह भी हों, हिंदुस्तान से निकाल दिए जाएं और मुल्क आजाद हो। लेकिन आजादी की जंग उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब एक काबिल शख्स, जो तहरीक का तमाम बोझ अपने कांधों पर लेकर मुंतशिर और इस बगावत की रहनुमाई के लिए आगे बढ़े। मैं जाती तौर पर हुकूमत की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। अगर तुम देसी राजगान अपनी तलवार दुश्मन के खिलाफ बेनियाम करने को तैयार हो, तो मैं उनके हक में शहंशाही से मुक्त हो जाऊंगा।
3: मगर अफसोस कि कई राजा नवाबों ने बहादुर शाह जफर के उक्त पत्र का जवाब तक न दिया। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी का आरंभ तो दरअसल 26 फरवरी 1857 ईस्वी को उस समय ही हो गया था जब बैरकपुर की 19 नंबर बटालियन ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। 26 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए एक अंग्रेज मेजर और लेफ्टिनेंट को गोली से उड़ा दिया।
2: अंबाला, मेरठ, कानपुर, पटना, दिल्ली और लखनऊ में स्थित अंग्रेजों के कई मकान जला दिए गए। जब 6 मई को सिपाहियों को चर्बी वाले कारतूस दिए गए, तो उन्होंने उनके इस्तेमाल से इनकार कर दिया, तो उनका कोर्ट मार्शल किया गया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हंगामा बरपा हो गया। जेल की दीवारें गिरा दी गईं। हिंदू मुसलमान सिपाहियों ने जालिम अंग्रेजों को खत्म करने का प्रण लिया। 10 मई की रात ही मेरठ के सिपाहियों ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए दिल्ली की तरफ कूच किया। 11 मई 1857 की सोमवार की सुबह ये लोग बागियाना नारे लगाते हुए दिल्ली में दाखिल हुए।
3: 22 फरवरी से 11 मई लगभग ढाई माह तक देश के विभिन्न नगरों में अंग्रेजों को निशाना बनाया जाता रहा। 11 मई 1857 ईस्वी से 14 सितंबर 1857 तक जनरल बख्त खां की रहनुमाई में दिल्ली में अंग्रेजों से मुकाबला जारी रहा। अंग्रेज जासूसों का जाल क्योंकि शहर दिल्ली एवं लाल किले में पूरी तरह फैल चुका था और वो अंग्रेजों को पल पल की खबरें पहुंचा रहे थे, इसलिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों की फौजें दिल्ली में दाखिल होने में कामयाब हो गईं।
2: 19 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर अपनी बेगमात और शहजादों के साथ लाल किला छोड़कर निजामुद्दीन चले गए। 3 दिनों तक बहादुर शाह जफर और उनका खानदान हुमायूं के मकबरे में छुपा रहा। बहादुर शाह जफर केंद्र बिंदु ना बन सकें और दिल्ली से बाहर ना चले जाएं, इसलिए अंग्रेज बादशाह बहादुर शाह जफर को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लेना चाहते थे। अंग्रेजों के वफादार भी इस कोशिश में लगे हुए थे ताकि वो अंग्रेजों के विश्वास पात्र बन जाएं। अतः बहादुर शाह जफर के समधी मिर्जा इलाही बख्श की मुखबिरी पर बहादुर शाह जफर को आसानी के साथ अंग्रेज जनरल हडसन ने गिरफ्तार कर लिया।
3: जकाउल्ला ने किताब तारीख उरूज में इंग्लिशिया में लिखा है, बादशाह की गिरफ्तारी के दूसरे दिन मुंशी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श ने खबर दी कि बादशाह के 2 बेटे और 1 पोते भी मकबरा हुमायूं में मौजूद हैं, जिन्होंने किले में अंग्रेज औरतों और बच्चों के कत्ल में हिस्सा लिया था। मेजर हडसन का खून इस खबर से जोश में आ गया और वो जनरल विल्सन से इजाजत लेकर शहजादों के कत्ल के लिए रवाना हुआ। नुसरत नामा गवर्नमेंट में गुलाम हुसैन खान लिखते हैं, हडसन ने तीनों शहजादों को कोतवाली के सामने खड़ा करके गोली से उड़ा दिया।
2: 1857 की जंग आजादी की कमान संभालने एवं अंग्रेजों के बागियों का साथ देने की सजा बहादुर शाह जफर को भुगतना पड़ी। बहादुर शाह जफर पर अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का आरोप लगाकर बाकायदा तौर पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की कार्यवाही लाल किले के दीवाने खास में यूरोपियन फौजी कमीशन के तहत कर्नल डेविस की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1858 को शुरू हुई और 9 मार्च 1858 को यह मुकदमा अंग्रेज कंपनी के पक्ष में और बादशाह के खिलाफ सुनाया गया।

0: बादशाह हैं।
1: बहादुर शाह जफर यद्यपि अंग्रेजों की दी हुई पेंशन पर आधारित थे, परंतु दिल्ली वालों की नजर में वो अभी तक हिंदुस्तान के बादशाह थे। आम प्रजा एवं अति विशिष्ट व्यक्ति भी उनको आदर और श्रद्धा की नजर से देखते थे। बहादुर शाह जफर वित्तीय एवं फौजी तौर पर कमजोर होने के बावजूद एक खास रणनीति और दिलचस्पी के साथ बागियों और इंकलाबियों की यथासंभव मदद करती रहे। उन्होंने अपनी सभी फौजों के नाम ये हिदायतनामा जारी किया, जो कि नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड में महफूज है। जो फौजें अंग्रेजों पर फतह पाने की गरज से बादशाह के साथ शरीक हुई हैं, उन पर यह वाजिब और लाजिम है कि वो बादशाह के अहकाम बजा लाएं और पूरी जां फिशानी यानी जी जान के साथ दुश्मन का सफाया करने की कोशिश करें। हर पियादे और सवार पर लाजिम है कि वो अपने अफसर की फरमा बरदारी करें। सब सिपाहियों और सरदारों पर वाजिब है कि वो दुश्मनाने मुल्क को मारने, गिरफ्तार करने या सजा देने में किसी किस्म की पहलू तही से काम न ले। जो सिपाही और अफसर इन अहकाम यानी आदेशों पर अमल करेगा, अपने ओहदे के मुताबिक इनाम और इजाफा पाएगा, और जो शख्स अपनी जान निसार करेगा, उसके बेटे, पोते या किसी करीबी अजीज को उसकी जगह मुलाजिम रख लिया जाएगा। जो दुश्मनों से साज बाज करेगा या किसी तरह उनकी मदद करेगा, उन्हें या रसद पहुंचाएगा, वो अपने किए की सजा पाएगा। बहादुरों को चाहिए कि जानो दिल से इस संग्राम में मसरूफ हो जाएं। छोटे अफसरों और सिपाहियों को चाहिए कि बादशाह के अहकाम को बजानो दिल से कबूल करें और उनके मुताबिक अमल करें।
0: आजादी के आंदोलन की सफलता के लिए बहादुर शाह जफर हिंदू मुस्लिम एकता को जरूरी समझते थे। बहादुर शाह के विश्वास पात्र करीबी अफसरों की अंग्रेजों से जासूसी करने और उनकी सहायता करने के कारण 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तानियों से दूर रखने के उद्देश्य से दिल्ली से दूर किसी टापू में भेजने का निर्णय लिया गया और 7 अक्टूबर की प्रातः 4 बजे लेफ्टिनेंट ओमनी की जेर कमान बहादुर शाह जफर उनकी बेगम जीनत महल, दो बेटे मिर्जा जवां बख्त और मिर्जा शाह अब्बास के साथ 35 शाही व्यक्तियों को बैलगाड़ियों के द्वारा दिल्ली से मिर्जापुर रवाना कर दिया गया, जहां से पानी के जहाज से इन लोगों को रंगून की बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया।
1: दोस्तों, यहां उन्हें विभिन्न खेमों और गैराज में रखा गया और फिर एक नई इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। वृद्धावस्था एवं सफर की तकलीफों के कारण बहादुर शाह जफर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। 6 नवंबर 1862 को उन्हें फालिज का तीसरा दौरा पड़ा और 7 नवंबर की सुबह 5 बजे 87 वर्ष की आयु में दिल्ली से दूर रंगून में उन्होंने आखिरी सांस ली और परदेश में ही वो दफन कर दिए गए। बहादुर शाह जफर सुप्रसिद्ध शायर भी थे। उनकी मशहूर गजल के ये शेर उन पर चरितार्थ एवं सिद्ध होते नजर आते हैं। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे न पायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में।
0: क्या बात है, वाह।
1: और विशेषता उनका ये शेर, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में।
0: दोस्तों, इंसानियत बहादुर शाह जफर का असल मजहब थी। सच्चाई, ईमानदारी, संवेदना, जनसेवा और सादगी उन्हें पसंद थी। वे सच्चे देशप्रेमी थे। अपने वतन हिंदुस्तान से उन्हें सच्ची मोहब्बत थी। उनकी कविताएं एवं गजलों में भारतीयता, भारतीय संस्कृति, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, रस्मों रिवाज, रहन सहन, बोली ठोली की झलकियाँ साफ तौर पर प्रतिबिंबित होती नजर आती हैं। बहादुर शाह जफर को मजहबी, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मामलों के साथ साथ वास्तुकला और निर्माण कार्यों से खास लगाव था। आमदनी कम होने के बावजूद उन्होंने उपरोक्त कामों एवं गतिविधियों को जारी रखने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कई कुएं, सड़कें, 12 दरियां, महरौली में जफर महल द्वार और कठरों का निर्माण कराया। बुढ़ापा, आंतरिक एवं बाहरी साजिशें, अंग्रेजों के जुल्म व सितम, आर्थिक कमियों और बढ़ते हुए खर्चों के कारण वे उतना कुछ नहीं कर पाए जितना करना चाहते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनकी कोशिशें भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को समृद्ध करने में व्यतीत हुईं।
1: स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अविस्मरणीय है। वो भारत

0: के एक ऐसे जियाले सपूत थे जिसकी रगों में माँ की तरफ से राजपूत खून भी दौड़ता था और जिसकी जिंदगी शानदार भविष्य न सही एक बेमिसाल अतीत रखती थी। अगरचे 1857 के सियासी इंकलाब ने उनके साम्राज्य का पूर्णतः समापन कर उन्हें एवं उनके परिवार को दयनीय अवस्था में पहुंचा दिया था, लेकिन देशभक्ति और शायरी के कारण उनका नाम आज भी आदर और सम्मान से लिया जाता है और भविष्य में भी उन्हें याद किया जाता रहेगा। उनकी रचनाएं आज भी कानों में रस घोलती हैं, 1857 की क्रांति और अंग्रेजों की क्रूरताओं की कहानियां सुनाती हैं। श्रोताओं, बहादुर शाह जफर का नाम भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक नक्शे पर हमेशा हमेशा जगमगाता रहेगा। आज हमने बात की है शब्दशिल्पी बहादुर शाह जफर की। शब्दशिल्पी, देशभक्त बहादुर शाह जफर की जिंदगी की किताब के पन्ने हम अगली बार भी खोलेंगे अपने कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंडानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन प्रोफेसर मोहम्मद नोमान खान, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
1: मैंने यानी आपके रेडियो मित्र डॉक्टर गौसिया ने।
0: तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ग्रीन हाउस का ब्राह्मण राजदूत हनुमंत राव और बर्क की अनोखी मित्रता। 1781 की गर्मियों में लंदन के सबसे असामान्य कूटनीतिक आवासों में से एक कोई महल नहीं, बल्कि बीकन्स फील्ड का एक ग्रीन हाउस यानी पौधा घर था। यहाँ के अतिथि थे हनुमंत राव, जो एक उच्च जाति ब्राह्मण राजदूत थे। उन्हें पदच्युत मराठा पेशवा द्वारा भ्रष्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ न्याय मांगने के लिए भेजा गया था। उनके मेजबान दिग्गज और मशहूर विचारक एडमंड बर्क थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दुर्लभ सांस्कृतिक सम्मान का परिचय देते हुए अपने ग्रीन हाउस को ब्राह्मणों के कठोर अनुष्ठान के लिए एक अभ्यारण्य में बदल दिया। हनुमंत राव का दैनिक जीवन एक विदेशी भूमि पर अपनी जाति शुद्धता को बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वे फर्श पर अपना भोजन स्वयं बनाने पर जोर देते थे और कमर से ऊपर लगभग निर्वस्त्र रहते थे, भले ही अंग्रेजी ठंडी हवाएं कांच के शीशों को झकझोर रही हों। उनके प्रवास का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका अटूट अनुशासन था। यदि भोजन करते समय कोई गैर ब्राह्मण उन पर केवल एक नजर भी डाल देता, तो वे आध्यात्मिक अपवित्रता से बचने के लिए तुरंत पूरे भोजन का त्याग कर देते थे। इन बाधाओं के बावजूद राजदूत और अंग्रेजी कुलीन वर्ग के बीच आत्मीय बंधन बन गया। हनुमंत राव बर्क और चित्रकार सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के काफी करीब आ गए थे। उन्होंने एक दुभाषी के माध्यम से उन्हें बताया कि उनकी उपस्थिति उन्हें वैसे ही सहारा देती है जैसे एक गेंडा अपने बच्चों को केवल निहार कर उनका पोषण करता है। हालांकि वे देखने में एक विदेशी एकांतवासी लगते थे, लेकिन वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंट थे। उनके द्वारा दी गई जानकारियों ने ब्रिटिश संसद को हिंदू कानूनों पर सबसे प्रामाणिक विवरण प्रदान किया, जिसने अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स के ऐतिहासिक महाभियोग की नींव रखी। हनुमंत राव के प्रवास ने यह सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय काला पानी पार करने के बाद भी अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति एक अडिग चट्टान की तरह बना रह सकता है।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद का महाप्रयाण हुआ, परंतु क्या वो सचमुच का ही चले जाना चिर निर्वाण था? क्या ये सही है कि हम भारतवासियों के साथ चिर विच्छेद था? नहीं, स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके संदेश, उनका जीवन दर्शन, उनका प्यार हमारे साथ है और चिरकाल रहेगा। एक समय उन्होंने कहा था,
1: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़कर चला जाऊं, परंतु मैं कार्य करता रहूंगा। जब तक संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता, मैं सर्वत्र मानव मात्र के मन में प्रेरणा जगाता रहूंगा।
2: कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रोमा रोला को एक पत्र में लिखा था,
3: यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं।
2: कितनी विलक्षण एवं अद्भुत वाणी है। इन दो वाक्यों के माध्यम से ही गुरुदेव ने स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी प्रासंगिकता की घोषणा कर दी है।
0: यदि नव भारत का निर्माण करना है तो पहले हमें भारत के शाश्वत सनातन रूप को, उसके विगत 5000 सालों से चलता आ रहा चैतन्य स्वरूप को जानना होगा। और यदि हम भारत का सही परिचय पाना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें विवेकानंद द्वारा दिखाए गए पथ पर चलना होगा, सुनना होगा, जानना होगा।
2: अर्थात उन्हें जाने बिना भारत के मूल स्वरूप को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपने ही शब्दों में विवेकानंद स्वयं एक घनीभूत भारत थे।
0: स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, किंतु उनके ज्वलंत विचारों ने 20वीं शताब्दी के भारत और विश्व की चेतना को झकझोर दिया था। हमारे सभी प्रमुख जननायकों, महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त कर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था और उन्हीं के विचारों से प्रकाशित होकर भारत को प्रगति के पथ पर ले गए थे।
2: आज हम 21वीं सदी के प्रारंभ में खड़े हैं। इस नई शताब्दी में, नए भारत के निर्माण में हमें जिस प्रकाश स्तंभ की आवश्यकता है, वो स्वामी जी के विचारों में ही निहित है। उनकी संज्ञा विवेकानंद ही है। वे आज प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके गंभीर, मनोरम, मोहक, तर्कसंगत और व्यावहारिक संदेश की आज भारत को बेहद जरूरत है। उनकी प्रासंगिकता हम आज भी महसूस करते हैं।
0: इसी प्रसंग में रूस के प्रख्यात भाषाविद एवं विवेकानंद साहित्य को आत्मसात करने वाले श्री चेलीशेव ने स्वामी जी के बारे में लिखा था,
3: वे केवल धर्मनायक ही नहीं, इससे कहीं अधिक है। वे शांति, मेल और मातृत्व के मसीहा हैं। उनका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक था। आज की दुनिया में समकालीन भारत एवं विश्व के लिए वो और भी ज्यादा प्रासंगिक बन गए हैं।
2: चेलीशेव के इस कथन में किसी कवि की भावुकता नहीं, वरन एक चिंतनशील मनीषी की युक्तिपूर्ण भावना ही व्यक्त हुई है।
0: स्वामी विवेकानंद के विषय में उनकी योग्यतम शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा था,
4: स्वामी विवेकानंद महान देशप्रेमी थे। मातृभूमि की आराधना को ही वे सर्वोपरि मानते थे।
0: वस्तुतः स्वामी जी के प्रति ये एक सही समझ है। स्वामी जी के पूर्व भी भारत ने अनेक रत्न महात्मा उत्पन्न किए, किंतु उन सब ने व्यक्तिगत मोक्ष का ही संदेश दिया था। विवेकानंद ही पहले ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने धर्म को जीवन से जोड़ा, समाज और राष्ट्र से जोड़ा। उन्होंने धर्म को पहाड़ और गुफाओं से उतार कर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ढालने का वंदनीय कार्य किया है।
2: हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक जीव ब्रह्म है, वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही युवक युवती है, और लाठी टेक कर चलने वाला वृद्ध भी वही है, परंतु व्यावहारिक जीवन में हमने

0: निर्मित करना होगा। श्री शंकर इस अद्वैतवाद को जंगलों और पहाड़ों में रख गए हैं। मैं इसे अब वहां से लाकर संसार और समाज में प्रचारित करने आया हूं। जो मंदिर में शिव की उपासना करते हैं उनकी पूजा प्रारंभिक है, और जो जीव को शिव मानकर उनकी सेवा करते हैं उनसे शिव अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यही असली पूजा है, यही सच्ची उपासना का सार है।
1: स्वामी विवेकानंद एक घुमंतू सन्यासी या परिव्राजक थे। उन्होंने सारे भारत की यात्रा कर देश की जनता की दुरावस्था को देखा था। जनता की दुर्दशा देख उनका मन रो पड़ता था। उन्हें लगा था कि जब तक गरीबों की व्यवस्था में सुधार नहीं होता तब तक भारत के नव निर्माण की आशा नहीं की जा सकती।
2: लोगों को लगता था नव निर्माण क्यों, क्या जरूरत है। स्वामी जी समझते थे कि भारत सनातन है, परंतु उस पर रूढ़ियों की काई जम गई है। उसे जब तक मिटाया नहीं जाता तब तक भारत अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगा। उन्होंने घोषणा की,
0: मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा पाप राष्ट्रीय पाप है आम जनता की उपेक्षा करना, और वही हमारे पतन का कारण है। भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद द्वारा पीसना।
1: निम्न जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार से दुखी होकर उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा था,
0: पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्तर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निम्न जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घूंटता हो। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब मनुष्य एक दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे?
2: तो फिर भारत के नवनिर्माण का उपाय क्या है?
0: हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्तित्व खो दिया है। हमें राष्ट्र के खोए व्यक्तित्व को वापस लाना है और आम जनता को उठाना है। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, और पुरोहितों तथा मठाधीशों के प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा।
2: उन्होंने इसी विषय पर और भी कहा था,
0: धर्म की बात सुनना हो तो पहले इस देश के लोगों के पेट की चिंता को दूर करना होगा। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं और हम उन्हें जरूरत से ज्यादा धर्मोपदेश दे रहे हैं, क्या मजाक है।
1: स्वामी जी ने किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त और विशेषाधिकार से रहित भारतीय समाज की कल्पना की थी। उनकी दृष्टि में विशेष सुविधा, योग करने की धारणा मानव जीवन के लिए कलंक स्वरूप है। शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सुविधाओं में से सर्वाधिक बुरा है आध्यात्मिक सुविधाओं का विशेषाधिकार। स्वामी जी की धारणा थी कि ये चारों प्रकार के शोषण मनुष्य के विकास में सबसे बड़े बाधक तत्व हैं, अतः इनका निराकरण होना चाहिए। वे कहते थे,
0: यदि ऐसे राज्य की स्थापना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके, उनके गुण दोषों को त्याग कर, तो वो आदर्श राज्य होगा।

0: भारत की समस्त दुर्दशाओं के मूल में स्वामी जी ने शिक्षा के अभाव को देखा है। उनका कथन है,
1: यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूम घूम कर वहाँ के गरीबों को भी अमन चैन और विद्या को देखकर मुझे अपने देश के गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? जवाब मिला, शिक्षा। शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से मन में ब्रह्म भाव जाग उठता है, परंतु हमारा वो ब्रह्म भाव क्रमशः संकुचित और खत्म होता जा रहा है।
0: स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में और बहुत कुछ कहा है।
1: भारत में हम गरीबों को, पतितों को क्या समझते हैं? हीन, तुच्छ और दयनीय। राक्षस जैसा क्रूर समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं, पर वे जानते नहीं कि वे भी मनुष्य हैं। समाज की ये दशा दूर करनी होगी।
0: अतः हमें यदि आधुनिक भारत का निर्माण करना है तो हमें स्वामी जी के कहे अनुसार भारतवासियों में सही शिक्षा का प्रसार करना होगा, उनमें मनुष्यत्व का भाव भरना होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करना होगा, उनकी दिव्यता को जागृत करना होगा। एक शोषण मुक्त स्वाधीन समाज के लिए मुक्त समाज और राष्ट्र के लिए ये अनिवार्य शर्तें हैं। इनके अभाव में अभिनव भारत नहीं गढ़ा जा सकता।
2: स्वामी जी ने हमें बताया कि चरित्र, सेवा, त्याग और प्रेम के द्वारा ही हम भारत का विकास कर सकते हैं। जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे तो कई लोगों ने उनसे कहा कि वे भारत की पराधीनता को दूर कर दें। जवाब देते हुए स्वामी जी ने कहा था,
1: ठीक है, मान लो कि मैं कल भारत को स्वतंत्र कर देता हूँ, तो क्या तुम उस स्वतंत्रता की रक्षा कर पाओगे? सारे देश में ऐसे लोग कहाँ हैं जो ऐसा कर सके?
0: इस तरह उन्होंने हमें बता दिया कि जब तक हमारे पास चरित्रवान मनुष्य नहीं होंगे, तब तक ना कुछ किया जा सकता और न ही कुछ पाया जा सकता है।
2: स्वामी जी ने देश के नव निर्माण के लिए सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा,
1: यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें पहले अपनी कोठरी के द्वार खुले रखने होंगे। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास जितने अभावग्रस्त लोग रहते हैं, उनकी तुम्हें यथार्थ सेवा करनी होगी। जो पीड़ित हैं उसके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। जो ज्ञानी है उसे वाणी द्वारा जहां तक हो सके समझाओ।
0: स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत तभी जगेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर मन, वचन और तन से उन करोड़ों भारतवासियों के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता और अज्ञानता के अगाध सागर में डूबते जा रहे हैं।
2: ये सेवा अहंकार भाव से नहीं, उपासना के भाव से होनी चाहिए। स्वामी जी का कहना था कि जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ये एक प्रकार की उपासना है, और जब आप मानवता की सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते हैं तो ये उपासना का दूसरा प्रकार हो जाता है, क्योंकि जीव वस्तुतः शिव ही है। वे कहते थे,
1: हम मंदिरों में जाकर पाषाण मूर्ति में देवता की जो उपासना करते हैं उसके लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, जबकि मनुष्य में देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। वो तो चलता फिरता मंदिर है और उसमें देवता स्वयं ही विराजित हो गए हैं। अतः ऐसे पीड़ित और असहाय मनुष्यों की सेवा रूपी उपासना से हमें ईश्वर का ही साक्षात्कार होगा।
0: आज हमारे सामने शायद ही कोई ऐसी समस्या है जिस पर स्वामी जी की तीव्र और पैनी दृष्टि न पड़ी हो और उन्होंने उसका समाधान प्रस्तुत न किया हो। जरूरत केवल इस बात की है कि हम उन समाधानों की ओर गहराई से ध्यान दें, उन पर चिंतन, मनन और अमल करें।

0: ये सच है कि देश आज अनेक कुरीतियों के अंधकार में आ फंसा है, लेकिन बुराइयों का रोना रोने मात्र से ही तो काम नहीं चलेगा, हमें अच्छाइयों की ओर जाना ही होगा। स्वामी जी ने बड़े प्रेरक शब्दों में एक मंत्र दिया था।
1: मैंने भारतवासियों से बारंबार कहा है और अब भी कह रहा हूं कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अंधकार फैला हुआ है तो क्या घोर अंधकार, भयंकर अंधकार कहकर चिल्लाने से अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं, रोशनी जला दो, फिर देखो कि अंधेरा आप दूर हो जाता है या नहीं। मनुष्य के सुधार का, उसके संस्कार का यही रहस्य है। उसके समक्ष उच्चतर बातें, उच्चतर प्रेरणाएं रखो। पहले मनुष्य में, उसकी मनुष्यता में विश्वास रखो। लोगों से ये भी कहने की जरूरत नहीं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है, खराब है। जो कुछ अच्छा है उसे उनके सामने रख दो, फिर देखो कि वे कितने आग्रह के साथ उसे ग्रहण करते हैं।
2: उन्होंने देशवासियों के सामने गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण रखकर कहा था,
1: हमें केवल देश की दुर्दशा और दुरावस्था की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करके हम केवल अपना मनोरंजन करते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो, यदि तुम देश की भलाई करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने देशवासियों में भले ही हजारों दोष दिखाई दें, पर तुम उनकी रग रग में बहने वाले हिंदू रक्त की ओर ध्यान दो। पहले तुम्हें इन स्वजातीय नर रूपी देवताओं की पूजा करनी होगी, भले ही वे तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए खास चेष्टा करें। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर अभिशाप और निंदा की बौछार करे तो भी तुम इनके प्रति प्रेम पूर्ण वाणी का प्रयोग करो। यदि ये तुम्हें त्याग दें, पैरों से ठुकरा दें, तो तुम उन्हीं वीर केसरी गोविंद सिंह की भांति समाज से दूर जाकर नीरव भाव से मौत की राह देखो। हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श रखना होगा, पारस्परिक विरोध भाव को भूलकर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा।
0: विदेश से लौटकर चेन्नई में स्वामी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वे समाज सुधार के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था,
1: हे मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, यदि हमारे समाज में, इस राष्ट्रीय जीवन रूपी जहाज में छेद है तो हम तो उसकी संतान हैं। जाओ, चलो उन छेदों को बंद कर दें, उसके लिए हंसते हंसते अपने हृदय का रक्त बहा दें। और यदि हम ऐसा ना कर सकें तो हमें मर जाना ही उचित है। हम अपना भेजा निकालकर उसकी डाट बनाएंगे और जहाज के उन छेदों में भर देंगे। उसकी भर्त्सना ना करें, इस समाज के विरुद्ध एक भी कड़ा शब्द मत निकालो।
2: स्वामी जी सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत के पक्षधर थे। इस संदर्भ में भी उनके विचार अनुकरणीय हैं। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात करता है, किंतु स्वामी जी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता नहीं, स्वीकृति की शिक्षा देते हैं। सहिष्णुता और स्वीकृति में अंतर है। उनका कहना था,
1: चूंकि एक ही सत्य सभी धर्मों के मूल में है, अतः हमें अन्य धर्मों की सत्यता को भी स्वीकार करना चाहिए।
2: वे कहते थे,
1: मैं सभी प्राचीन धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उनके साथ सम्मिलित होकर उपासना करूंगा। वे जिस किसी रूप में ईश्वर की पूजा करें, मैं उनसे प्रत्येक के साथ उस रूप में भगवान की आराधना करूंगा। मैं मुसलमानों के साथ मस्जिद में जाऊंगा, ईसाइयों के साथ गिरजे में जाकर क्रूसित ईसा के सामने घुटने टेकूंगा। मैं बौद्धों के मंदिर में प्रवेश कर बुद्ध और उनके धम्म की शरण लूंगा और वन में जाकर उस हिंदू के साथ ध्यानस्थ होकर बैठूंगा जो सबके हृदय को प्रभावित करने वाली ज्योति के दर्शन करना चाहता है।
0: स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपने जीवन में प्रदर्शित जितने मत उतने पथ का निर्देश ही स्वामी जी के इस धार्मिक सिद्धांत के मूल में निहित है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है,
3: भारतवर्ष की धार्मिक समस्या का जो समाधान रामकृष्ण ने दिया है, उससे बड़ा और अधिक उपयोगी समाधान और कोई नहीं कर सकता। ये एक बड़ा सत्य है। नव भारत के निर्माण में हमें इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना होगा। स्वामी जी ने इस देश के लिए इस्लामी शरीर तथा वेदांती बुद्धि के समन्वय पर जोर दिया था, अर्थात इस्लाम की समानता के आधार पर हमारे समाज की संरचना हो और हमारे मस्तिष्क में जन जन के प्रति अद्वैत की अभेद बुद्धि हो, तभी हमारा राष्ट्र सुसंगठित रह सकेगा और हमारी भावनात्मक एकता तथा अखंडता की रक्षा हो सकेगी।

0: भारत में आज जातिगत विषमता और ऊंच नीच, अगला पिछड़ा वर्गों की जटिलता बढ़ती जा रही है। स्वामी जी इन बातों से घृणा करते थे। वे दुखी होकर कहा करते थे,
1: मुझे विशेष दुख इस बात पर होता है कि वर्तमान समय में भी जातियों के बीच इतना मतभेद चलता रहता है। इसका अंत होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों के लिए व्यर्थ है, खासकर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि इस तरह के एकाधिकार और विशेष दावों के दिन लद गए। प्रत्येक अभिजात्य वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वो स्वयं ही खोदे, और जितना शीघ्र से कर सके उतना ही अच्छा होगा। वो जितनी देर करेगा वो उतनी ही सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी ही भयंकर होगी। अतः ये ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करें।
2: दूसरी ओर वे पिछड़े वर्ग के लोगों से कहा करते थे कि
1: हे पिछड़ी जाति के लोगों, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है, और ये लड़ना झगड़ना और उच्च वर्णों के विरोध में लेख लिखना व्यर्थ है। जातियों में समता लाने का एकमात्र उपाय उस संस्कार और शिक्षा का अर्जन करना है जो उच्च वर्गों का बल और गौरव है। यदि ये तुम कर सको तो जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा।
0: स्वामी जी ये मानते थे कि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया, पर वे सबके लिए समानता के पक्षधर थे। वे कहते थे,
1: अगर किसी को ज्यादा अवसर देना है तो वो निर्बलों को देना चाहिए। निर्बलों को सबल से अधिक अवसर देना उचित है। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणों को शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पिछड़ों को। यदि ब्राह्मण के लड़के को एक शिक्षक चाहिए तो पिछड़े लड़के को 10, क्योंकि अधिकतर सहायता उसे मिलनी चाहिए जिसे प्रकृति ने जन्म से कुशाग्र बुद्धि नहीं दी है।
2: स्वामी जी भारत में एक उन्नत और स्वस्थ समाज की कल्पना करते थे। वे सपना देखते थे कि
1: लाखों नर नारी पवित्रता के भाव से उद्दीप्त होकर, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर, तथा गरीबों पतितों एवं पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संकीर्ण भारत में उद्धार एवं समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे।
0: स्वामी जी हमेशा मनुष्यों की सेवा, दलितों के उद्धार की बातें सोचते रहते थे। वे कहते थे,
1: नियम या संविधान से बड़ा है मनुष्य। कोई भी देश इस बात से महान नहीं बनता कि उसके संसद में कैसे कैसे कानून बनते हैं, बल्कि इस बात से कि उसके पास मनुष्य कैसे हैं, क्योंकि मनुष्य ही नियमों को बनाता है। नियम मनुष्य को नहीं बनाते, मनुष्य रुपए पैदा करता है, रुपए मनुष्य को पैदा नहीं करते। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है, कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा नहीं करते।
0: अतः वे कहते थे,
1: मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो, तब देखोगे कि बाकी सारी चीजें स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ स्वयं हो जाएगा।
2: उनकी एक विख्यात उक्ति है,
1: जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता।
0: आधुनिक भारत के निर्माण के लिए लोगों को हृदयवान होना ही होगा। वे वज्र घोष के साथ कहते हैं,
1: मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट की चिंता से भारत बेचैन है। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए।
2: इस नव भारत के निर्माण के लिए स्वामी जी ने युवकों का, चरित्रवान युवकों का आह्वान किया। उनका विचार था,
1: भारत को कम से कम अपने सहस्त्र मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है, पर ध्यान दो, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। भारत तभी जागेगा जब इसके विशाल हृदय वाले सैकड़ों नर नारी भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर उन भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता तथा ज्ञान के सागर में डूबते जा रहे हैं।
0: उन्होंने एक नए अभिनव भारत की कल्पना की थी, जिस भारत में सभी लोग अपने अपने स्तरों पर कार्य करने में जुट जाएंगे।
1: एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेदकर, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, कारखानों से, हाट से और बाजार से, निकले झोपड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से।
2: अंत में विवेकानंद के बारे में रामधारी सिंह दिनकर की उक्ति ही सटीक प्रतीत होती है।
3: अभिनव भारत को जो कुछ कहना था वो विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संदेश विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वो सेतु है जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वो समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सबके सब समाहित होते हैं।
2: भारत के नव निर्माण के लिए स्वामी जी का दिया हुआ मंत्र हमें हमेशा याद रखना होगा।
1: उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति किए बिना विश्राम मत लो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रमा मजूमदार का सरोदवादन।

मेरी तालीम शाहजहाँपुर घराने से प्रमुखता हुई है और कुछ चीज़ें हर तंत्रकार को बीनकार घराने से जब तक कुछ ना मिले तब तक उसकी तालीम पूरी नहीं समझी जाती है। तो मेरे गुरु एवं दादा गुरु दोनों ने शाहजहाँपुर परंपरा से सीखने के बाद सेनिया ग्वालियर सेनिया परंपरा से भी तालीम ली है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत ही संक्षेप में।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: विलंबित एकताल राग बिहाग आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, इस दिन के किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतत उसके, आ मृत्यु आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के थड़ थड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आ मृत्यु आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

अब मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सबने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन, अठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: May I come in, sir?
3: Yes, come in. फरमाइए।
2: सर, ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपनसेशन का सर।
3: कंपनसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर, आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर, आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर, कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत हुए
1: श्रीमान।
0: हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन? कपाल भारती जी। अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो गई?
2: ना ना ना ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने।
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित तो हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं? नहीं सर वो।
1: हाँ
0: ओ, भाई बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज हर्चे खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: ये है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और ये है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप?
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? 7 ही ना।
4: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
3: अंधे कवि?
4: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको। हाँ। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया। हाँ। तुलसीदास।
4: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा?
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
4: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
4: हाँ।
3: सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे न, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोच कर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को 2 दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब 2 आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो 2 दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, 2-2 लोगों के 2 गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
2: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
3: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
2: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
3: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी। बस हो गया, 12 पेंसिलें और 10 रुपए। हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
2: अच्छा,

0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
1: ओसामा बिन लादेन मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
0: हाँ तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
1: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
0: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता, हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
0: बहन छायावती ने।
1: बहन छायावती ने, मगर वो कैसे?
0: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
1: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
0: सर जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
1: वेरी गुड वेरी गुड, एक उदाहरण देंगे इन करों का?
0: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
1: अच्छा अब एक आखिरी सवाल।
0: जी।
1: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
0: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर 36 साल।
1: करेक्ट आंसर, मगर कैसे निकाला आपने भाई?
0: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
1: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
0: जी बेहतर सर।
1: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कन्हैया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
2: जी सर।
1: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
2: सर हमारे पास एक आइडिया है।
1: वो क्या?
2: सुनिए सर।
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, फिर बुलाइए बुलाइए बुलाइए बुलाइए। चतुर्सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
0: जी सर।
1: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
0: 17,542, मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं, इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए, और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
1: चतुर्सेन आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन।

0: आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
1: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
2: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
0: बताइए बताइए,
2: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
0: अभी हमारे
2: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
1: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 70,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर लाइए, ये चेक मुझे दे दीजिए।
0: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
1: सर,
0: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: अतुल्य भारत।
0: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
2: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
0: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
2: बिल्कुल,
0: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
2: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
0: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
2: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
0: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
2: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं। पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
0: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
2: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
0: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
2: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
0: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
2: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
0: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
2: बिल्कुल,
0: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
2: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे, कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं, कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए, कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा। जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं, जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया।
0: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
0: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
2: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
0: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
2: बिल्कुल।
0: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
2: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
0: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
2: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
2: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
0: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
0: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
2: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद शास्त्र पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
0: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
2: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
0: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
2: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
2: बिल्कुल,
0: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
0: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं। लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
2: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
0: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
2: बिल्कुल,
0: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
2: कौन सी कविता?
0: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
2: वाह,
0: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
2: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
0: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
2: बिल्कुल,
0: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
2: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
0: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
2: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
0: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं, उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
2: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
0: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
2: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
0: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
2: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
0: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
2: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
0: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
2: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढकर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
0: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
0: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
0: बिल्कुल ठीक
2: बात, साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
2: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
0: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
2: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
0: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
2: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
0: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
2: जी।
0: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झर जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
2: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
0: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
2: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
0: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
2: बिल्कुल।
0: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
2: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
2: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
2: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
4: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।